आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, प्रोग्राम है भोर सुहानी। जीवन के राह में अच्छे दोस्त की अनमोल देन है। दोस्ती केवल साथ हंसने का नाम नहीं, बल्कि मुश्किल समय में एक दूसरे का हाथ थामने का नाम भी है। आज किसी अपने को यह एहसास जरूर कराइए कि वह आपके जीवन में कितना महत्वपूर्ण है।

नृत्य हमारे विचारों को शक्ति देता है, शिवम हमारे कर्मों को पवित्र बनाता है और सुंदरता हमारे दृष्टिकोण में जन्म लेती है। इसलिए आज का संकल्प हो, सच बोलें, अच्छा करें और हर परिस्थिति में अच्छाई देखने की कोशिश करें।

हर नई सुबह अपने साथ बदलाव का संदेश लेकर आती है. जैसे मौसम बदलता है वैसे ही जीवन की परिस्थितियां भी बदलती रहती हैं. इसलिए कठिन समय में घबराइए नहीं. बादलों के पीछे सूरज हमेशा मौजूद रहता है, बस हमें उसके लौटने का विश्वास बनाए रखना है. तो इसी संदेश के साथ मैं आपसे लेती हूँ अनुमति छोड़ के जाऊँ एक बहुत सी प्यारे से गीत के साथ. जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दीजिए अनुमति और आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, साथ ही साथ सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर. नमस्कार.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नई दिल्ली के सत्यनिकेतन इलाके में इमारत ढहने की घटना की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने इमारत के मालिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार ये फैसला घटनास्थल पर स्थिति का जायजा लेने और हादसे के प्रारंभिक आकलन के बाद लिया गया। मुख्यमंत्री कार्यालय के द्वारा बताया गया है कि इस गंभीर घटना के लिए जो भी जिम्मेदार पाया जाएगा उसकी पूरी जवाबदेही तय की जाएगी और कानून के अंतर्गत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस बीच कल देर रात एक और शव मिलने के बाद हादसे में मरने वालों की संख्या 6 हो गई है। घटनास्थल पर राहत और बचाव अभियान जारी है। एनडीआरएफ, अग्निशमन सेवा, दिल्ली पुलिस और अन्य एजेंसियों की टीमें मौके पर राहत और बचाव कार्य में जुटी हैं। दिल्ली के महापौर प्रवेश वाघी ने कहा है कि 4 से अधिक मंजिल वाली सभी अवैध निर्माण वाली इमारतों को तत्काल सील किया जाएगा। दिल्ली विश्वविद्यालय का श्री वेंकटेश्वर कॉलेज आज इमारत हादसे के मद्देनजर बंद रहेगा। आर्यभट्ट कॉलेज ने भी आज शिक्षण कार्य स्थगित कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने इस घटना पर दुख व्यक्त किया है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अधिकारी घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य में जुटे हैं तथा हादसे से प्रभावित लोगों की मदद की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में भारत और फ्रांस के संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति मैक्रों के साथ मिलकर दोनों देश एक विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी का निर्माण कर रहे हैं। फ्रांस के पेरिस में स्वामी नारायण मंदिर के उद्घाटन के दौरान श्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा कहा कि प्रौद्योगिकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रक्षा से लेकर अंतरिक्ष और जलवायु परिवर्तन तक दोनों देश नई गति और नई ऊर्जा के साथ मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों पक्ष इस वर्ष को भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के रूप में मना रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी विशेष है क्योंकि ये दीर्घकालिक सांस्कृतिक और राजनीतिक संबंधों की मजबूत नींव पर टिकी है।
1: BAPS के माध्यम से जब अलग अलग देशों में मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा होती है तो वहाँ भारत के प्राचीन विचार और मानवीय मूल्य भी साथ साथ ही जाते हैं। और भारत का विचार कहता है समानम मनः सह चित्तमेषां, अर्थात हमारे मन समान हो, हमारे हृदय साथ जुड़े। इसलिए आज जब फ्रांस में इतना भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ है, ये फ्रांस की विविधता को तो समृद्ध करेगा ही, इससे भारत और फ्रांस के सांस्कृतिक संबंधों को भी ऊर्जा मिलेगी।
0: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव कल संयुक्त अरब अमीरात के 3 दिन की यात्रा पर दुबई पहुंचे। वो दुबई में वार्षिक निवेश बैठक कांग्रेस में भाग लेंगे और निवेशकों के समक्ष मध्य प्रदेश को एक आकर्षक निवेश स्थल के रूप में प्रस्तुत करेंगे। यात्रा का लक्ष्य रसद, खनन, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, वस्त्र और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहित सभी क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करना है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने मीडिया की उन अटकलों और गलत सूचनाओं पर स्पष्टीकरण जारी किया है जिनमें इसरो के निजीकरण या उसकी भूमिका कम करने के प्रयासों की बात कही गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में इसरो ने कहा कि न तो उसका निजीकरण और न ही उसका महत्व कम किया जाएगा। अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी का उद्देश्य अंतरिक्ष कार्यक्रम को सक्षम बनाना है। ईरान के शीर्ष सुरक्षा अधिकारी ने कहा है कि आने वाले दिनों में हॉर्मुज जलडमरू मध्य के बाहर एक नया प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ईरान के साथ समन्वय के बिना इस क्षेत्र में प्रवेश करने वाले किसी भी जहाज को ईरान की प्रतिबंध सूची में डाल दिया जाएगा। सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव मेजर जनरल मोहसिन रिजाई ने कहा है कि यह प्रतिबंधित क्षेत्र अमरीकी नौसेना की नाकाबंदी वाली सीमा से शुरू होकर फारस की खाड़ी के कुछ हिस्सों तक फैलेगा। सात्विक साइराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स का खिताब जीत लिया है। भारतीय जोड़ी ने कल चीन के खिलाड़ियों को हराया। यह इस प्रतियोगिता में भारत का पहला तथा इस जोड़ी का इस सत्र का दूसरा खिताब है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

All right, it's 5 minutes past 11 by the studio clock. A very, very good morning, Hyderabad, and hello to everyone who's just tuning in. मंडे मॉर्निंग है जी हाँ. एंड आई नो कुछ लोगों के लिए मंडे मीन्स फ्रेश स्टार्ट, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी, न्यू एनर्जी. और कुछ लोग होंगे जो शायद अभी भी वीकेंड को ऑफिशियली गुड बाय बोलने के मूड में नहीं है. जी हाँ, क्योंकि वीकेंड होता ही है इतना प्यारा है कि नहीं. छुट्टी, हमारे जो घर के लोग हैं वो हमारे साथ होते हैं, एंड कहीं ना कहीं बहुत सारे प्लान्स बनाए जाते हैं कि नहीं. तो वीकेंड का नशा तो मंडे तक भी रहता ही है. बट व्हाटएवर काइंड ऑफ मंडे यू आर हैविंग, लेट्स मेक इट अ गुड वन. मे बी विथ अ कप ऑफ चाय और कॉफ़ी, और मे बी विथ अ फेवरेट सॉन्ग और अ फ्यू इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशंस, एंड ऑफ कोर्स थोड़ी सी मेरी कंपनी. बिकॉज यू आर लिसनिंग टू आकाशवाणी हैदराबाद, FM रेनबो 101.9, एंड दिस इज नमस्ते हेलो आदाब. आई एम निशा एंड आई एल बी राइट हियर विथ यू थ्रू दिस ब्यूटिफुल मॉर्निंग. सो सेटल इन, टर्न द वॉल्यूम अप जस्ट अ लिटिल, एंड लेट्स बिगिन दिस मंडे टुगेदर विद सम म्यूजिक, सम स्माइल्स, एंड मे बी अ थॉट और टू अलॉन्ग द वे. सो स्टे विथ मी बिकॉज it's gonna be a very beautiful musical journey where I'll be playing a mix of Hindi and Western hits for you. So the first track which I'm gonna be playing for you is called Careless Whisper by George Michael. So stay tuned. This is FM Rainbow 101.9.

This our WhatsApp number is 4023234822, and as I can see, some messages pouring in, and the first message is from Ashok G. He's writing, "Good morning." So good morning to you too. And then a message from Suchitra. She's saying hi, and thank you so much, Suchitra, for sending this message. And then we have a message from Sarwar Ali ji. He's saying, "Good morning, Nisha ji." So a very, very good morning to you too. Bahut bahut shukriya message bhejne ke liye. And then we have a message from Deepu. He's saying, "Good morning." So a very good morning to you too. And he's saying that he's stuck in traffic. Mehdi Patnam ka traffic. Hey Ram. Okay, so I think there's a lot of traffic there. But कोई बात नहीं है क्योंकि आप हमारा शो सुन रहे हैं तो आई थिंक कितना भी ट्रैफिक क्यों ना हो जर्नी बहुत ही इजीली कट जाएगी अगर बैकग्राउंड में अच्छे से यू नो म्यूज़िक बजता रहे तो. एंड ही हैज़ रिक्वेस्टेड अ सॉन्ग बाय माइकल जैक्सन अ प्लीज़ विथ नो नेम सो आई ट्राई माई बेस्ट टू प्ले दिस सॉन्ग एंड फॉर नाउ आई विल बी प्लेइंग अ ब्यूटिफुल सॉन्ग बाय द बैक स्ट्रीट बॉयज सो स्टे ट्यून्ड दिस इज़ एफ एम रेनबो 101.9 एंड And the show is called Namaste, Hello, Adab.

0: FM Rainbow 101.9
1: 11:55 दोस्तों आप सुन रहे आकाशवाणी हैदराबाद FM रेनबो 101.9। मैं हूं निशा आपके साथ आज आपकी हम सफर इस खूबसूरत म्यूजिकल जर्नी में, जिसे कहते हैं नमस्ते हेलो आदाब। और समय को देखते हुए यही कह सकती हूं कि अब से थोड़ी देर में ये जो हमारा सेगमेंट है ये खत्म हो जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, एक बार फिर से हम लौटेंगे 12:10 पर शो के नेक्स्ट सेगमेंट के साथ। और फिलहाल के लिए जो वक्त है उसमें प्ले करेंगे एक सॉन्ग को, और आपको बता दें कि दोपहर के 12 आप सुन पाएंगे न्यूज इन हिंदी और 12:05 पर न्यूज इन इंग्लिश। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। और फिलहाल के लिए मैं आपके लिए प्ले करती हूँ एक प्यारा सा सॉन्ग। आप सुन रहे FM रेनबो 101.9।

0: समाचार के साथ मैं कनकलता। गृहमंत्री अमित शाह आज गोवा के पणजी में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। ये बैठक गृह मंत्रालय के अंतर्राज्य परिषद सचिवालय द्वारा आयोजित की जा रही है और इसकी मेजबानी गोवा सरकार कर रही है। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद में गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र तथा केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव शामिल हैं। गृहमंत्री आज गोवा राज्य पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज भी प्रदान करेंगे। ये सम्मान राज्य पुलिस बल के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि होगा। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री तथा विदेश मंत्री जेवियर बेटल की आज नई दिल्ली में मुलाकात होगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि श्री बेटल की यह यात्रा दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को और मजबूत करने का अवसर है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंत्री मंजिंद्र सिंह सिरसा के साथ आज सत्य निकेतन इलाके में ढही इमारत स्थल का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने बताया कि मलबे का काफी हिस्सा दशकों पुराने बहुमंजिले भवन स्थल से हटा दिया गया है।
1: लगभग 80% मलबा हट चुका है, केवल बेसमेंट जितना मलबा रहा है। अभी इसमें 12 लोग मिले हैं, जिसमें से 6 डेड हैं और 6 अभी ठीक स्थिति में हैं। उन सभी के पेरेंट्स हमारे टच में हैं। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनको किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, बच्चों को ठीक इलाज मिल रहा है।
0: मुख्यमंत्री ने कहा कि भवन के मालिक की अनदेखी के कारण ये दुर्घटना हुई।
1: इस बिल्डिंग के मालिक पे कार्रवाई होगी और जो इसके आसपास की जितनी डेंजरस बिल्डिंग है उनको भी आइडेंटिफाइड करके ध्वस्त किया जाएगा। विशेष रूप से इस बिल्डिंग के बिल्कुल पीछे वाली बिल्डिंग को भी हमने खाली करवा दिया है और तुरंत प्रभाव में उसे भी डेमोलिश किया जाएगा।
0: इस बीच घटनास्थल पर बचाव और राहत कार्य जारी है। आज सफदरजंग अस्पताल से धौलाकुआं की ओर जाने वाले मार्गों पर यातायात प्रभावित रहेगा। प्रवर्तन निदेशालय ने उर्दू दैनिक अखबार मशरिक और उसके निदेशक तथा तृणमूल कांग्रेस के सांसद नदीमुल हक से जुड़े एक मामले में कोलकाता, दिल्ली और रांची में 7 परिसरों में छापेमारी की है। जांच एजेंसी ने बताया कि यह मामला सांप्रदायिक सद्भाव को कथित तौर पर बढ़ावा देने संबंधी सामग्री के प्रसार और प्रकाशन तथा अवैध लेनदेन के आरोपों से जुड़ा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने मीडिया की उन अटकलों और गलत सूचनाओं पर स्पष्टीकरण जारी किया है जिनमें इसरो के निजीकरण या उसकी भूमिका कम करने के प्रयासों की बात कही गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में इसरो ने कहा कि न तो उसका निजीकरण होगा और न ही उसका महत्व कम किया जाएगा। ओपेक प्लस समूह के 7 प्रमुख देशों ने वैश्विक स्तर पर बनी अनिश्चितता के बीच अक्टूबर के लिए तेल उत्पादन नीति में कोई बदलाव न करने का फैसला किया है। इन देशों में सऊदी अरब, रूस, इराक, कुवैत, कजाकिस्तान, अल्जीरिया और ओमान शामिल हैं। कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इन देशों ने वैश्विक तेल बाजार की स्थिति और संभावनाओं की समीक्षा की। ओपेक प्लस ने सितंबर में प्रतिदिन करीब 1,88,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाया था।

घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज गिरावट देखी गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 443 अंक गिरकर 76,000 पर और निफ्टी 138 अंक गिरकर 23,759 पर कारोबार कर रहा था। दिग्गज सिनेमाटोग्राफर टीएन कृष्णन कुट्टी का 96 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। मलयालम सिनेमा में उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। श्री कृष्णन कुट्टी ने 1960 में अपने करियर की शुरुआत उम्मा फिल्म में कैमरा ऑपरेटर के रूप में की थी। इसके बाद उन्होंने 70 से अधिक फिल्मों में सिनेमाटोग्राफर के रूप में काम किया। जम्मू कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आज से शुरू हो रहा है। इस महोत्सव को स्थानीय फिल्मकारों और रचनात्मक पेशेवरों को व्यापक फिल्म उद्योग से परिचित कराने और क्षेत्र में निवेश तथा रोजगार के नए अवसर पैदा करने के एक बड़े अवसर के रूप में देखा जा रहा है। 4 दिवसीय इस महोत्सव में 40 देशों की 135 फिल्में दिखाई जाएंगी। भारत ने एएफसी अंडर 20 फुटबॉल एशिया कप में प्रवेश कर लिया है। भारत ने ताशकंद में कल अंतिम क्वालिफाई मुकाबले में बांग्लादेश को 3-0 से हराकर 20 वर्ष में पहली बार इस प्रतियोगिता में जगह बनाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: FM Rainbow 101.9 Musically yours.
1: दोपहर के 12:11 दोस्तों, आप जुड़े हुए आकाशवाणी हैदराबाद एफएम रेनबो 101.9 के साथ शो चल रहा है नमस्ते हेलो आदाब, और मैं हूं निशा आपके साथ. आज आपकी हम सफर इस खूबसूरत सी म्यूजिकल जर्नी में, वेल, आप जहां कहीं भी हो, मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि आप हमारे शो का हिस्सा बने रह सकते हैं. और वो कैसे पता है? हमारे न्यूज ऑन एयर ऐप के जरिए. जी हाँ, ये ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं और हमारा चैनल एफएम रेनबो हैदराबाद से जुड़े रह सकते हैं आप जहां कहीं भी हो, किसी काम को करते करते भी. और अगर आप हमसे जुड़े हुए ही हैं तो बातें तो बनती है ना, और बातें सिर्फ एक तरफ से हो तो वो काफी नहीं है. तो इसीलिए मैं चाहूंगी कि आप भी यहां पर हाजिरी लगाएं, है ना, आप भी अपने मैसेजेस हम तक पहुंचाएं. हमारा व्हाट्सएप नंबर है 4023234822. और मैसेजेस की बात करें तो यहां पर एक मैसेज सरवर अली जी का, कहते हैं गुड आफ्टरनून. तो आपको भी अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून और बहुत बहुत शुक्रिया मैसेज भेजने के लिए. एंड देन अनदर मैसेज, ये हैं अशोक जी फ्रॉम सुल्तानशाही, एंड ये लिखते हैं कि जिंदगी हसीन है, जिंदगी से प्यार करो, है रात तो सुबह का इंतजार करो, वो पल भी आएगा जिसका इंतजार है आपको, रब पर भरोसा और वक्त पर एतवार करो. वाह क्या बात है. एंड यस, इसी के साथ एक और मैसेज, एंड ये है महेश फ्रॉम दक्षिण लेवल, लिखते हैं बालानगर, लिखते हैं गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू? वेल, गुड आफ्टरनून टू यू टू, एंड आई एम वेरी वेरी गुड, थैंक यू, एंड आई होप यू ऑल्सो डूइंग गुड, एंड थैंक यू सो मच फॉर सेंडिंग दिस मैसेज. एंड यस, इसी के साथ हम आगे बढ़ाएंगे इस सेगमेंट को. और अभी फिलहाल जिस गाने की तरफ मैं आपको लेकर चलने वाली हूँ ना दोस्तों, वो जो गाना है ये है फिल्म नायक से. और नायक की बात करें तो आपको याद ही होगा शिवाजी राव का दमदार कैरेक्टर, है कि नहीं दोस्तों? एंड इस फिल्म की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आज ही के दिन 2001 में ये फिल्म रिलीज हुई थी, नायक द रियल हीरो. और इस फिल्म के डायरेक्टर एस शंकर हैं जिन्होंने उनकी पहली फिल्म आई थी उसकी ये फिल्म रीमेक थी, मुधालवन करके एक फिल्म आई थी 1999 में, तमिल की फिल्म थी. एंड सेम डायरेक्टर ने जब ये मूवी खूब चली तो फिर इसका रीमेक बनाया और यही फिल्म है नायक. एंड यस, कमाल का अभिनय किया था अनिल कपूर, अमरीश पुरी और रानी मुखर्जी ने. और इसी फिल्म से ये कमाल का गाना तो सुनते रहिए ये एफएम रेनबो 101.9, ये प्यारा सा सॉन्ग उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति की आवाजों में. और

अगर आप हमें मैसेजेस भेजना चाहते हैं तो नंबर है 4023234822। और इसी के साथ यहाँ पर महेश जी हमारे साथ जुड़े हैं और एक सॉन्ग की रिक्वेस्ट की है फ्रॉम द फिल्म दिल चाहता है, दिल को तुमसे प्यार हुआ, दिल को तुमसे प्यार हुआ। हम कोशिश करेंगे कि हम प्ले कर पाएँ। 12:14 सुनते रहिए FM रेनबो 101.9।

पुलिस कॉरपोरेशन। दोस्तों आज यानी 7 सितंबर को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं इंटरनेशनल डे ऑफ पुलिस कॉरपोरेशन, और इस दिन का एक सिंपल सा मैसेज है कि कंट्रीज की पुलिस और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज मिलकर काम करें, जो करना भी चाहिए, एंड साथ में इंफॉर्मेशन शेयर करें और क्राइम्स को इफेक्टिवली टैकल करें, क्योंकि दोस्तों क्राइम बॉर्डर्स क्रॉस कर सकते हैं, तो कॉरपोरेशन को भी करना पड़ेगा, है ना। बॉर्डर्स क्रॉस करने पड़ेंगे क्योंकि तभी सब कुछ पॉसिबल है, यानी क्रिमिनल्स को पकड़ना। एंड यस, इस डे को एस्टैब्लिश करने का डिसीजन यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने 2023 यानी 2023 में लिया था, ताकि इंटरनेशनल पुलिस कॉरपोरेशन की इंपॉर्टेंस को रिकग्नाइज किया जा सके। लेकिन क्योंकि दोस्तों आज क्राइम का नेचर काफ़ी चेंज हो चुका है, लाइक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, टेररिज्म, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग और साइबर क्राइम जैसे क्राइम्स एक कंट्री की बाउंड्रीज तक लिमिटेड नहीं रहते, और इसी वजह से अलग अलग कंट्रीज़ की पुलिस और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के बीच कॉपरेशन और इंफॉर्मेशन शेयरिंग बहुत इम्पॉर्टेंट हो गई है। और दोस्तों यहीं पर इंटरपोल यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कमीशन जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का रोल आता है, विच इज़ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज इंटरपोल, जो मैंने बताया दुनिया भर की पुलिस फोर्सेस को कनेक्ट करने में हेल्प करता है ये, ताकि कंट्रीज इंफॉर्मेशन शेयर कर सके और इंटरनेशनल क्रिमिनल्स के खिलाफ मिलकर एक्शन लिया जा सके। तो जी हाँ, इंटरनेशनल डे ऑफ पुलिस कॉरपोरेशन का पर्पज सिर्फ पुलिस को अप्रिशिएट करना नहीं है, इट ऑल्सो मीन्स दैट वी रिकग्नाइज that international cooperation is essential for keeping people safe in an increasingly connected world. और मुझे लगता है कि इसका मैसेज बहुत सिंपल है कि क्राइम अगर इंटरनेशनल हो सकता है तो उसका सोल्यूशन भी इंटरनेशनल कॉपरेशन से ही स्ट्रांग होगा। और दोस्तों पुलिस कॉपरेशन की बात हो रही है तो हमें ये भी याद रखना चाहिए कि सेफ सोसाइटी सिर्फ पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, पुलिस तो अपना काम करती ही रहेगी, लेकिन सिटीजन्स का कॉपरेशन भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। जैसे अगर हम कुछ सस्पिशियस देखते हैं तो क्राइम रिपोर्ट करते हैं, लॉज फॉलो करते हैं और ज़रूरत के वक्त अथॉरिटीज़ के साथ कॉपरेट करते हैं, तो ये सारी ही चीज़ करनी चाहिए, तो हम भी एक सेफर सोसाइटी क्रिएट करने में अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं, ये सब जब हम कर रहे होते हैं। सो ऑन दिस इंटरनेशनल डे ऑफ पुलिस कॉपरेशन, लेट्स रिमेंबर दैट कॉपरेशन बिल्ड्स ट्रस्ट एंड ट्रस्ट बिल्ड्स सेफर कम्युनिटीज़। तो आज के दिन दोस्तों उन सभी पुलिस ऑफिसर्स और लॉ एनफोर्समेंट पर्सनल को सल्यूट जो अपनी ड्यूटी के थ्रू हमारी सेफ्टी और सिक्योरिटी इंश्योर करने की कोशिश करते हैं, और इसी थॉट के साथ चलिए हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं फिलहाल के लिए एक सॉन्ग की तरफ, क्योंकि बातें बहुत हो चुकी है। सुनते रहिए ये FM रेनबो 101.9।

दिल में, तो मैं ट्राई करूंगी कि इसे मैं प्ले कर पाऊं। एंड देन यहाँ पर हमारे पास एक और मैसेज है, ये लिखते हैं, गुड मॉर्निंग निशा जी, नमस्ते आपको, आपको भी अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून जी हाँ, एंड नमस्ते। और ये लिखते हैं कि आपकी आवाज़ अच्छी लगती है, तो थैंक यू सो मच। एंड इनकी भी एक सॉन्ग रिक्वेस्ट है, एंड ये सॉन्ग रिक्वेस्ट है फ्रॉम के श्रीकांत चारी, हरिका सुमना एंड साई मणिकंठा और तनिष्क कार्तिक की तरफ से, ये हैं करमन घाट से। तो थैंक यू सो मच ये मैसेज भेजने के लिए। एंड मैं आपकी जो रिक्वेस्ट है आशिकी में, सॉन्ग की रिक्वेस्ट है इन्होंने दिल का क्या कसूर फिल्म से, तो मैं उसे ट्राई करूंगी कि मैं प्ले कर पाऊँ। एंड देन वी हैव अनदर मैसेज, ये लिखती है, हाय आरजे निशा, आई एम गुनगुन फ्रॉम कोटी, हाय गुनगुन, आई होप यू डूइंग वेल, लिखती है, आप कैसे हो? तो मैं बिल्कुल अच्छी हूँ, एंड आपका वॉइस स्वीट है, आप सिंगिंग क्यों ट्राई नहीं करते? वेल ये जो कमेंट है ये मैंने पहली बार मेरे लिए आया हुआ है, बट आई होप कि कभी ना कभी मैं सिंगिंग ट्राई कर पाऊँ। वैसे मैं हर किसी की तरह गाना गाती हूँ अकेले में और इन्जॉय करती हूँ, आपको भी करना चाहिए, यू नो। एंड यस, ये लिखती है कि आपका लास्ट शो वॉज सो अमेजिंग, यू एंड आरजे जेडी, द स्टोरी पार्ट वॉज अमेजिंग, ऑल थैंक्स टू आरजे जेडी, उनकी स्टोरीज जो है इतनी कमाल की होती हैं, तो तारीफ करना तो बनता है। सो एक बड़ी शो की रिक्वेस्ट है, सो थैंक यू सो मच फॉर दिस रिक्वेस्ट, एंड आई होप कि हम जल्दी एक और बड़ी शो के साथ मैं और जयदीप यहाँ पर स्टूडियो में आए और आपको एंटरटेन करें। एंड एक सॉन्ग रिक्वेस्ट, जगजीत सिंह की आवाज़ में एनी सॉन्ग, तो जी हाँ, जगजीत सिंह ने काफ़ी काफ़ी खूबसूरत गज़लें और सॉन्ग्स हमें दिए हैं, तो एक सॉन्ग तो बनता है। एंड हुदा बाबा नगर से, हाय निशा जी कैसे हो आप? तो हुदा, बहुत दिनों बाद आपने मैसेज किया है, थैंक यू सो मच फॉर दिस मैसेज, एंड मैं बिल्कुल अच्छी हूँ, आई होप कि आप भी बहुत अच्छे हो। एंड लिखती हैं कि ये वो चार चांद हैं जो आपके आने से शो पर लग जाते हैं, और चार चांद जो है मून की फोटो भेजी हुई है, तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। एंड एक सॉन्ग की रिक्वेस्ट, जो ख्वाबों ख्यालों में, तो मैं कोशिश करूंगी, वैसे बहुत सारे सॉन्ग रिक्वेस्ट यहाँ पर आ चुके हैं, तो देखते हैं कि किस किस का सॉन्ग जो है रिक्वेस्ट प्ले हो पाता है। एंड अशोक जी यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लवली मैसेजेस। यही तो है कमाल, हमारे जो लिसनर्स हैं हर रोज़ अपना प्यार हम पर बरसा देते हैं, न्यौछावर कर देते हैं, है ना, हमारी झोली में अपना प्यार डाल देते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लवली मैसेजेस। एंड फिलहाल के लिए एक बहुत ही प्यारा सॉन्ग मैं प्ले करने जा रही हूँ, एंड दिस सॉन्ग इज़ फ्रॉम द फिल्म बैंड बाजा बारात, तो सुनिए, गुनगुनाइए, क्योंकि ये जो सॉन्ग है गुनगुनाने लायक ही है बिल्कुल। तो सुनते रहिए एफ एम रेनबो 101.9।

जाएगी। नो डाउट हम आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं, बड़े शहर, हर जगह तरक्की, हाई राइज बिल्डिंग्स, अच्छे रोड्स और साथ में ढेर सारा कंस्ट्रक्शन। आपने ध्यान तो दिया ही होगा ना कि हर रोज़ हम कभी ट्रैफिक में खड़े रहते हैं, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि ट्रैफिक में फंसे रहते हैं, कभी कंस्ट्रक्शन साइट के पास से निकल रहे होते हैं जहाँ पर थोड़ी बहुत धूल हमारे कपड़ों पर और हमारे फेस पर भी चिपक जाती है। जी हाँ, और कभी कभी वेदर क्लियर होने के बावजूद हवा में एक अजीब सी हैवीनेस महसूस होती है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर रोड पर कचरा पड़ा है तो हम तुरंत बोल देते पोल्यूशन, अगर नदी में प्लास्टिक तैर रहा है तब भी पोल्यूशन दिखाई देता है, ना बहुत कचरा हो गया, अगर बीच पर गार्बेज पड़ा है तो पोल्यूशन है, उसे बहुत सारे क्लीनिंग ड्राइव साफ भी कर लेते हैं। लेकिन हवा में जो पोल्यूशन है वो हमारी आंखों के सामने होते हुए भी अक्सर इनविजिबल होता है, और शायद इसी वजह से हम उसे उतना सीरियसली नहीं लेते। लेकिन जो चीज़ हमें दिखाई नहीं देती दोस्तों, इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो हमारे ऊपर असर नहीं करती। हम सांस लेते हैं हर मिनट, हर सेकेंड, और हमारे पास चॉइस भी नहीं है कि हम ना कहें सांस लेने के लिए, है कि नहीं। आज हवा खराब है तो मैं सांस नहीं लूंगा, ऐसा बोल सकते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। वी सिंपली ब्रीद, राइट? और इसी वजह से क्लीन एयर कोई लग्जरी नहीं है, क्लीन एयर इज अ बेसिक नेसेसिटी। वेल, इसी इंपॉर्टेंट बात को याद दिलाने के लिए हर साल 7 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज ऑब्जर्व किया जाता है, और इसीलिए हम इस बारे में बात कर रहे थे कि हमारा जो नीला आसमान है वो अब नीला क्यों नहीं दिख रहा है कि नहीं, थोड़ा सा हल्का सा सफ़ेद होने लगा है। जो नीला आसमान था वो फॉग, पोल्यूशन, इन सारी ही चीज़ों से, स्मोक, इन सारी ही चीज़ों से कवर होता जा रहा है। तो इस बारे में सोचने की ज़रूरत है, और इसीलिए शायद यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने 2019 में 7 सितंबर को इस खास दिन को मनाने को का प्रस्ताव रखा था, और पहली बार इसे 2020 में ऑब्जर्व किया गया। और दोस्तों, इस दिन का पर्पस सिंपल है, लोगों को समझाना कि क्लीन एयर हमारी हेल्थ और लाइफ के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, और एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट्स, ऑर्गेनाइजेशंस, बिजनेसेस और हम सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, क्या कभी आपने ये सोचा है कि आखिर हमें इस दिन को मनाने की ज़रूरत पड़ी ही क्यों? वेल, मैं आपको इस सवाल के साथ छोड़े जाती हूँ, तब तक आप सोचते रहिए कि इस दिन को मनाने की ज़रूरत आखिर हमें पड़ी क्यों, एंड ख्याल रखते रहिए हमारी सुंदर सी प्रकृति का, है कि नहीं, क्योंकि काफ़ी सुंदर है ना प्रकृति। और अगर हमारा नेचर खूबसूरत दिखे तो आई थिंक हर दिन हम जब सुबह उठेंगे ना तो हमें बहुत अच्छा फील होगा, सिर्फ बाहर निकल कर ही, कोई लग्जरी की ज़रूरत नहीं, बस बस बाहर का वातावरण देख के मन खुश हो जाएगा। खैर, मन खुश मेरा तो यहाँ पर हो रहा है मैसेजेस देखकर, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे मैसेजेस आ चुके हैं और हमारे साथ और कुछ लिसनर्स जुड़ चुके हैं। यहाँ पर हमारे साथ अभी इमरान जी जुड़ चुके हैं, लिखते हैं गुड आफ्टरनून निशा जी, तो अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू यू टू, शुक्रिया मैसेज भेजने के लिए। एंड देन वी हैव अनदर मैसेज, हाई निशा गारू, हेलो, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू यू टू, एंड ये लिखते हैं टुडे इज़ माई ब्रदर्स सन बर्थडे, हिज नेम इज़ अजीत कुमार, प्लीज़ कैन यू विश हिम, तो उनको जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं, विशिंग हिम अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे एंड अ सॉन्ग रिक्वेस्ट, भीगी भीगी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर दिस मैसेज, एंड फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ेंगे कुछ सॉन्ग रिक्वेस्ट की तरफ। तो यहाँ पर इस सेगमेंट में ज़्यादा समय तो नहीं है हमारे पास, बट कुछ सॉन्ग रिक्वेस्ट आई थिंक प्ले कर पाएंगे हम यहाँ पर। तो कुछ सॉन्ग रिक्वेस्ट जो हैं, एक है महेश जी की तरफ से, तो फिलहाल पहला सॉन्ग दिल को तुमसे प्यार हुआ।

FM Rainbow 101.9. दोपहर के 1:01 दोस्तों, आप जुड़े हुए आकाशवाणी हैदराबाद FM रेनबो 101.9 के साथ, मैं उनिशा आपके साथ आज आपकी हम सफर इस खूबसूरत से म्यूजिकल जर्नी में. एंड यहाँ पर आप हमारे साथ बने हुए थे नमस्ते हेलो आदाब के साथ. एंड आई होप कि आपने सारे ही सॉन्ग्स जो मैंने प्ले किए वो पसंद किए होंगे. एंड फिलहाल जो वक्त है यानी 1:02, ये कहता है कि अब हम शुरुआत करने वाले हैं हेलो रेनबो की. जी हाँ, हेलो रेनबो वही सफ़र जहाँ पर आप हमसे जुड़ते हैं और हमसे करते हैं ढेर सारी बातें. जी हाँ, और सबसे पहले तो आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल. एंड कहीं भी क्यों ना हो, आप कुछ भी काम क्यों ना कर रहे हो, मैं जानती हूँ कि आप थोड़ा सा वक्त निकाल ही लेते हैं कॉल करने के लिए और हमसे बात करने के लिए. और इसीलिए हम भी हर रोज़ हेलो रेनबो के साथ हाज़िर रहते हैं यहाँ पर स्टूडियो में. वैसे अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे फ़ोन नंबर है 0402323 0030, 0402323 4821 और 0402970 4715. और इससे पहले कि आप हमसे जुड़ें, मैं जानती हूँ कि आप यही सोच रहे होंगे ना कि आज का जो टॉपिक है वो क्या होने वाला है, किस चीज़ पर बात होने वाली है. तो दोस्तों, आज के लिए हमारी जो बातचीत होने वाली है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आपके पास आई थिंक इस क्वेश्चन के लिए बहुत सारे जवाब होने वाले हैं. और क्वेश्चन यही है कि ऐसी कौन सी एक बात है जो आप चाहते हैं कि आपने लाइफ में थोड़ा पहले सीख लिया होता. जी हाँ, मे बी कोई ऐसी बात जो आपने 30 साल की उम्र में सीखी और अब लगता है कि काश ये बात मुझे 20 साल की उम्र में ही पता होती. शायद पैसे को लेकर कुछ, शायद रिलेशनशिप्स को लेकर, शायद खुद पर भरोसा करना, या फिर ये समझना कि हर किसी को खुश करना ज़रूरी नहीं होता. तो आज का हमारा फ़ोन इन क्वेश्चन है, व्हाट इज वन थिंग यू विश यू हैड लर्न्ड अर्लियर इन लाइफ, यानी ऐसी कौन सी बात है जो आपने थोड़ी देर से सीखी लेकिन अब आपको लगता है कि अगर ये पहले समझ आ जाती तो क्या ही बात थी, है ना. शायद लाइफ थोड़ी अलग होती, शायद लाइफ की जो जर्नी है ना वो थोड़ी स्मूथ होती अगर मुझे ये बात पहले से पता होती. शायद मैंने इतना रोया ना होता अगर मुझे ये बात पता होती, और शायद

0: आने होते वो नहीं आए होते हैं। तो कहीं ना कहीं हर चीज़ का जवाब पढ़ाई है। आप पढ़ाई पूरी करते उसके बाद आपके बिहेवियर में बहुत सारी तब्दीलियाँ आती हैं आपके नेचर में, एंड कुछ तो आपकी अपब्रिंगिंग पर भी डिपेंड करता है कि कैसी सराउंडिंग में आप पले बड़े हैं और आपके माँ बाप ने कैसी आपकी परवरिश की है आपके घर वालों ने, और एजुकेशन डेफिनेटली। तो बहुत ही अच्छा, और जी हाँ, जैसा कि आपका कहना था कि यूनिक जवाब भी था। एंड एक और मैसेज ये है डॉक्टर अहमद अब्दुल हलीम, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, एंड बहुत बहुत स्वागत है शो में। ये लिखते हैं कि मुद्दतों के बाद आपकी आवाज़ सुनने का मौका मिला, उम्मीद करते हैं कि आप सलामत होंगे। डॉक्टर खान एंड फैमिली फ्रॉम निज़ामाबाद, जी हाँ, हम बिल्कुल सलामत हैं, एंड उम्मीद करते हैं कि आप सब भी खैरियत से हों। एंड ये लिखते हैं कि पुराने शाम के शो की बात ही कुछ और थी, आजकल के शोज़ में वो पुराना सुकून और सादगी नहीं रही। पहले के शाम के जो शोज़ थे सिर्फ मनोरंजन नहीं होते थे बल्कि पूरे परिवार के साथ एक साथ बैठने और सुकून पाने का जरिया होते थे। बात तो है क्योंकि शाम का वो वक्त जो होता है ना, जब हम थक कर हार कर घर को पहुंचते हैं और लगता है कि कोई अपना दिख जाए, है कि नहीं, थोड़ी सी सुकून थोड़ी सी राहत मिल जाए, और तब घर पर बैठते हैं आराम से फ्रेशन अप होकर, और उसके बाद परिवार के साथ कुछ काम करते रहे और रेडियो सुनते रहे तो अलग ही मज़ा आता है। खैर, बहुत बहुत धन्यवाद इस मैसेज को भेजने के लिए, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एंड फिलहाल काफ़ी बातें हो चुकी हैं, बट फिर भी क्योंकि हमारे एक लिसनर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो फिलहाल के लिए मैं जुड़ना चाहूँगी हमारे एक लिसनर के साथ। हेलो रेनबो।
1: हेलो रेमबो, गुड आफ्टरनून, आदाब निशा जी।
0: गुड आफ्टरनून, आदाब शेर खान जी, कैसे हैं आप बताइए।
1: अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम, आपकी दुआ, और उम्मीद करता हूँ आप भी बिल्कुल खैरियत से होंगे।
0: बिल्कुल खैरियत से हैं, एंड मैं ये चाहूँगी कि हमारे जो लिसनर्स हैं वो सभी खैरियत से हो।
1: बिल्कुल बिल्कुल, वही तो, सभी को मेरा प्यार भरा सलाम आदाब। बस अल्लाह से दुआ है आपको सभी को हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, सेहतमंद रखे,
0: चलिए, बहुत अच्छी बात है, एंड
1: और
0: आई होप,
1: सुकून से रखे हमेशा।
0: चलिए आई होप कि ये सारी ही बातें हमारे सभी लिसनर्स तक पहुंच चुकी हो। एंड शेर खान जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत कॉल करने का, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। और आज का क्वेश्चन आपको पता है, एक छोटा सा सवाल पूछा है मैंने।
1: जी,
0: हाँ जी,
1: हमारे जेडी भाई को भी सलाम आदाब है हमारा, और आपका
0: हम्म,
1: डबल शो कब होने वाला है उनके साथ?
0: ये तो जेडी भाई से पूछना पड़ेगा, हम दोनों की अवेलेबिलिटी पर भी डिपेंड करता है
1: हाँ,
0: एक
1: वो तो
0: साथ।
1: बिजी
0: हाँ
1: वो तो
0: जी,
1: बिजी होंगे ना आप तो।
0: ओके, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे लिसनर्स के लिए हम बिल्कुल बिजी नहीं हैं, आप की चाहत है तो हम ज़रूर एक बार बड़ी शो के साथ लौटेंगे। फिलहाल
1: बिल्कुल
0: के लिए तो आज आप हमसे जुड़े हुए हैं तो आज का जो सवाल है उसका आंसर आपसे मैं चाहूँगी कि आप दें।
1: हाँ, बहुत खुशी की बात है, आप बहुत जल्दी उस दिन आए थे और आज भी जल्दी आ गए, वरना बहुत ज्यादा इंतजार करना पड़ रहा है हमारे प्यारे
0: ओ
1: प्यारे आरजे के लिए हमको।
0: ओके ओके,
1: शुक्रिया निशा जी, मेरे को एक बात समझ में आई कि जैसे मैं बचपन में ही ब्लाइंड हो गया था ना, तो बाद में मम्मी पापा का प्यार बहुत मिलता था, तो दुनिया वाले बाहर वाले देख के मुझे बोलते थे, कुछ हैरान होते थे, ताजुब होते थे मेरे को देख मुझे देख के, अरे बच्चा कैसा अभी से ब्लाइंड है, नाबीना है, कैसा होऊंगा इसका, बड़ा होके कैसा होऊंगा। तो मैं सोचता था, अरे क्यों बोलते लोग ऐसा, सब मेरे पापा है, मेरे भाई लोग है, इतने ये है,
0: जी,
1: मतलब बचपन में समझ नहीं थी। लेकिन बाद में जब हालात आए, समझ आई, जैसे जैसे बड़े हुए समझ में आया, सबने मुंह मोड़ लिया, तो सब रंग बिरंगी दुनिया के रंगों में रंग गए, तो सब समझ में आया कि हाँ सच ही बोलते थे, ये बात समझ में आई। और बहुत ज्यादा देर तो नहीं हुई, जल्दी समझ में आई, लेकिन कि दूसरों पे डिपेंड नहीं रहना किसी पे, किसी
0: बिल्कुल सही बात है
1: पे
0: ये
1: भी
0: तो।
1: डिपेंड नहीं रहना, अपने हो या दोस्त हो या कोई भी हो,
0: कोई भी
1: डिपेंड
0: हो,
1: नहीं रहना, अपनी कोशिश जो होती है वो
0: करते रहना।
1: उससे सीखना, समझना और जल्दी कोशिश करने की कोशिश में लगे
0: जी
1: रहना।
0: जी जी बिल्कुल सही बात कही आपने,
1: ये
0: थैंक यू सो
1: हमारे
0: मच।
1: मुमताज बाजी को भी सलाम, और एक सॉन्ग की रिक्वेस्ट है निशा जी, अगर मिल
0: हाँ,
1: जाए तो
0: कोशिश
1: प्ले कर
0: करेंगी,
1: दो।
0: कोशिश।
1: हाँ, फिल्म का नाम है सफर, लता मंगेशकर के आवाज में। हम थे जिनके सहारे, वो हुए ना
0: हमारे, नाइस सॉन्ग।
1: हमारे, डूबी जब दिल की नैया, सामने थे किनारे। अगर ये मिल जाए तो प्ले
0: थैंक
1: कर
0: यू
1: दो।
0: थैंक यू, चलिए बहुत
1: आपने
0: बहुत
1: वक्त दिया,
0: शुक्रिया
1: आपका बहुत
0: हमसे
1: बहुत
0: जुड़ने के
1: शुक्रिया,
0: लिए। ओके,
1: कामयाबी हमेशा आपके
0: थैंक यू
1: कदम
0: सो
1: दुआएं,
0: मच,
1: अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे।
0: थैंक यू सो मच फॉर ऑल द ब्लेसिंग्स, थैंक।

0: जो आंसर है वो है प्यार।
1: हाँ प्यार, प्यार
0: ओके
1: माँ
0: रमैया जी।
1: बुरा के बात बात कर रहे था कौन भी कौन है तो भी नजदीक आता है, आने को पसंद नहीं रहता।
0: ओके तो ऐसी कौन सी बात है जो आपको लगता है कि काश मैंने पहले सीख ली होती लाइफ में?
1: हाँ चश्मा, हैप्पी गुड आफ्टरनून निशा, अच्छा अच्छा बात
0: गुड
1: करे।
0: आफ्टरनून।
1: तेलुगु बात पहले से पहले बात बात करो, बिल्कुल फिर बात करना, पहले बात करना है आप वो बात नमस्ते, फिर
0: हाँ,
1: बोल
0: और एक
1: बोल।
0: और एक चीज और मैंने सीखी है, बागुंदी कदा।
1: हाँ ऐसे
0: ओके तो बताइए।
1: ओके, क्या क्या बताना।
0: कौन सी ऐसी चीज है जो आप अपने लाइफ में पहले काश सीख ली होती, एक यू नो लाइफ लेसन?
1: मेरा लाइफ में मेरा ब्रदर हो तो ब्रदर अच्छा है, उनके बात हम भी अच्छी 82 ईयर आया तो भी उनको उसमें उनको वो लोकल में नहीं ऊपर गया है तो भी उनका बात हम दिल में रख लेता रहता।
0: ओके ओके
1: अच्छा
0: चलिए। थैंक यू
1: अच्छा माँ,
0: थैंक
1: थैंक
0: यू
1: यू माँ, थैंक यू
0: थैंक
1: थैंक
0: यू
1: यू
0: फॉर
1: निशा,
0: कॉलिंग।
1: थैंक यू माँ,
0: थैंक
1: थैंक
0: यू
1: यू
0: सो मच।
1: बाय।
0: थैंक यू। तो जी हाँ, ये थे रम्या जी, एंड आई थिंक ये हमारे कुछ और कॉलर्स भी हमसे जुड़ना चाहते हैं, जुड़ेंगी उनसे भी एक छोटे से संदेश के बाद।
2: తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఓటర్ జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ ఎస్ఐఆర్ 2026లో భాగంగా డ్రాఫ్ట్ ఓటర్ల జాబితాలో మీ పేరు ఉందో లేదో చెక్ చేసుకోండి. ఒకవేళ జాబితాలో మీ పేరు లేకపోతే కొత్తగా ఓటరు నమోదు చేసిన దానికి డిక్లరేషన్ ఫామ్ తో పాటు ఫామ్ 6, అభ్యంతరాలకు ఫామ్ 7, సవరణలకు ఫామ్ 8 ద్వారా ఆగస్టు 17 నుంచి సెప్టెంబర్ 16 లోపు ఆన్లైన్ లో voters.eci.gov.in వెబ్సైట్ ద్వారా లేదా ఆఫ్లైన్ లో ఈఆర్ఓ, ఏఈఆర్ఓ లేదా బిఎల్ఓకు మీరు దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. వివరాలకు టోల్ ఫ్రీ నెంబర్ 1950కు కాల్ చేయండి. జారీ వారు ప్రధాన ఎన్నికల అధికారి తెలంగాణ.
3: ఎఫ్ఎం రెయిన్బో 101.9.
0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हैदराबाद, FM रेनबो 101.9 पर. हेलो रेनबो, और जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. हमसे जुड़ने के लिए हमारे जो फ़ोन नंबर्स हैं वो है 0402323 0030, 0402323 4821 और 0402970 4715. तो जी हाँ, यहाँ पे हमारे ढेर सारे श्रोता मित्र हैं जो हमसे जुड़ रहे हैं, अपनी बातें हम तक पहुँचा रहे हैं. एंड बातों की बात करें तो एक छोटा सा सवाल मैंने आपसे पूछा है कि ऐसी कौन सी बात है जो आपने थोड़ी देर से सीखी लेकिन अब आपको लगता है कि अगर ये पहले समझ में आ जाती ना तो शायद लाइफ थोड़ी अलग होती. हम कितनी बार ऐसी सिचुएशंस में लाइफ में फंस जाते हैं कि लगता है कि यार सोल्यूशन क्या होना चाहिए, है ना? एंड फाइनली हमें सोल्यूशन पता लगता है लेकिन काफ़ी देर हो जाती है. लाइफ जो है ना, ये तब तक आपको वो काम देते रहती है जिसका आपने सोल्यूशन नहीं ढूंढा है. जैसे कोई एक चीज़, जैसे फॉर एग्जांपल पेशेंस. अगर आपने पेशेंस नहीं सीखी है तो बार बार ऐसे सिचुएशंस आते रहेंगे आपकी लाइफ में जहां पर आप अपना आपा खो दोगे और बहुत कुछ बिगड़ जाएगा, और लाइफ में ये रिपीट मोड पे चलते रहेगा, होते रहेगा होते रहेगा होते रहेगा. एंड फाइनली एक दिन आप कुछ सोचोगे कि अरे इतनी बड़ी सिचुएशन और सिर्फ वहां पे मुझे चुप रहना था, बस पेशेंस रखना था, एंड काम अपने आप निकल जाता, टल जाता. तो जिस दिन आप वो पेशेंस सीख लोगे ना, तो फिर से वो जो सिचुएशंस आपकी लाइफ में हुई थी वो नहीं दोहराई जाएंगी. एंड आई थिंक लाइफ का यही रूल है. और आई थिंक बहुत सारे लोग अपने अपने एक्सपीरियंसेस से बहुत कुछ सीखते हैं लेकिन काफ़ी लेट हो जाती है. और इसीलिए पूछना चाहती हूँ कि वो कौन सी चीज़ है जो आपने बहुत लेट सीखी लेकिन आपको लगता है कि पहले सीख लेना चाहिए था. तो हेलो रेनबो, हेलो हेलो रेनबो.
1: हेलो नमस्कार जी,
0: नमस्कार जी, प्रभाकर राव
1: हेलो।
0: जी.
1: हाँ ये क्या क्या क्या क्या,
0: बताइए कैसे हैं आप?
1: हम तो 100 साल बराबर जीतेंगे।
0: वाह क्या बात है,
1: हाँ
0: क्या बात है.
1: मेमोरी पावर बहुत अच्छा है मैडम, मैं तो बहुत बढ़िया है, आप कैसी है?
0: मैं बहुत अच्छी हूं, और बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद.

0: धन्यवाद है लम्मा,
1: थैंक यू सो
0: धन्यवाद।
1: मच फॉर कॉलिंग, और बहुत बहुत स्वागत है आपका, बताइए।
0: लम्मा टॉपिक क्या है माँ?
1: टॉपिक, एक ऐसा लाइफ लेसन जो आपने लाइफ में बहुत लेट सीखा और आपको लगता है कि वो लाइफ लेसन आपको बहुत पहले सीख लेना चाहिए था।
0: अम्मा ठीक है, मैं रिस्पॉन्डेंट काफी बहुत अच्छा है माँ।
1: थैंक यू।
0: इससे पहले भी दो तीन वक्त बोला मैं तेलुगु जो पूछा माँ।
1: आप तेलुगु और हिंदी किसी भी लैंग्वेज में बोलिए, क्योंकि हमारे लिसनर्स तेलुगु भी समझते हैं, हिंदी भी समझते हैं, तो आई थिंक वो समझ जाएंगे।
0: मैं पेरेंट अमा, मैं पेरेंट अमा,
1: निशा।
0: निशा निशा गारु, ओके धन्यवाद अम्मा। के रमेश మాట్లాడుతున్నాను. అయితే అమ్మా నేను 2-3 సార్లు అమ్మా మా ఫ్రెండ్స్ సర్కిల్ లో మరియు మా రిలేటివ్స్ లో హామీ బట్టి నేను చిట్టి ఇప్పించానమ్మా. చిట్టి ఇప్పిస్తే సగం కూడా కట్టకుండా మొత్తం నా మీద పడ్డదమ్మా. ఇంకోసారి బ్యాంక్ లో లోన్ ఇప్పించాను మా బాబాయ్ కొడుకు ఇప్పించానమ్మా. తమ్ముడే వరుసగా అవుతాడు, వాడు కూడా ఒక 10-12 ఏళ్ళు కట్టి నా మీద పడ్డాదమ్మా. ఆత్మహత్య నుంచి నాకు అనిపిస్తుందమ్మా, ఎవరు కూడా హెల్ప్ చేయదు. అట్లా హెల్ప్ చే అసలైన హెల్ప్ అవసరం ఉన్నాడు కూడా రిప్లై చేస్తాను దెబ్బ వస్తుంది అమ్మా. అట్లా అది చాలా బాధ అనిపిస్తుంది అమ్మా నాకు. ఎవరైనా నిజంగా ఆ హెల్ప్ ఉన్న వాళ్ళకు కూడా ఇక చేసే వరకు ఈ చేయబు ఇయ్యబుద్ది కాదమ్మా, అట్లా అవుతుంది అనమాట. హలో హలో
1: జీ
0: ఇట్లా ఇట్లా అవుతా అవుతా ఉంది మై బోర్డు అమ్మా. 3-4 ఒక దో తీన్ తీన్ బార్ మై ధోకా కాలి,
1: అచ్చా
0: తీన్ బార్
1: ధోకా
0: ధోకా కాలి అమ్మా. దూసరం హెల్ప్ కన్నా బో తో డరో రా, మేరకు హెల్ప్ కైసా కన్నా హెల్ప్ కరో రా, ఐసా హో రా.
1: अच्छा, एक काम कीजिए, आपने धोखा खाया है, कोई बात नहीं, धोखा हम सभी खाते हैं, लेकिन अगली बार से किसी पे भी जब विश्वास करने की कोशिश करें तो अपने मन की सुनेगा। एक अंदर से एक आवाज आती है, बहुत जोर से आती है, बट कभी कभी हम उस आवाज को इग्नोर कर देते हैं। एंड आई थिंक वो जो आवाज होती है जो हमारे अंदर से आती है, वो हमारे एक्सपीरियंसेस पर बेस्ड होती है, तो वो सही होती है आई
0: बराबर
1: थिंक।
0: बराबर बोले, बराबर बोले, बिल्कुल 100% करेक्ट आप बोले.
1: जी, ओके, तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग।
0: धन्यवाद किए रमेश मान.
1: धन्यवाद, धन्यवाद। तो यस, हमारे बहुत सारे लिसनर्स हमसे जुड़े, और कुछ और भी लिसनर्स हैं जो हमसे जुड़ना चाहते हैं, उनसे भी जुड़ते हैं। आइए देखते हैं हमारे नेक्स्ट कॉलर कौन है। हेलो रेनबो।
2: वेरी वेरी वेरी वेरी वेरी गुड आफ्टरनून मैडम श्रीनिवासराव मलकपेट माँ.
1: वेरी वेरी वेरी गुड आफ्टरनून श्रीनिवास जी, पहले ही मैं बता दे रही हूँ कि शॉर्ट में बात करेंगे, ठीक है? सबसे पहले तो
2: अच्छा जी,
1: बहुत बहुत स्वागत आपका, एंड कैसे हैं आप?
2: अरे हम भी तो बिंदास हैं मैडम, आप ही बहुत दिन के बाद हमारे से मुलाकात हो रही है.
1: बहुत दिनों बाद आपसे बात हो रही है।
2: तो टॉपिक क्या दिया मैडम?
1: कौन सा ऐसा लाइफ लेसन है जो आपने लाइफ में काफी लेट सीखा है, आपको लगता है कि वो मुझे पहले ही सीख लेना चाहिए था, अगर मैं सीख लेता वो उस चीज को तो लाइफ काफी आसान हो गई रहती।
2: हम तो उसके बारे में बोलने का एक ही वॉकिंग, तो वॉकिंग में पहले से बच्चे दोस्त हमारे, मेरा स्त्रीभूत था, मेरे स्त्रीभूत के सामने से सुबह में 7 o'clock 6:30 कैसा जा रहे, तो पूछ रहा था अरे कहाँ जा रहे वो, तो वॉकिंग को जा रहे. अरे
1: ओके
2: वॉकिंग को कौन जाते, अरे नींद नहीं आए वाले वॉकिंग को जाते बोल के बोलता था. तो जब मेरे को शुगर आ गया,
1: ओके
2: तो डॉक्टर लोग बोल दिए कि तुम वॉकिंग करना, तो
1: हाँ
2: मैं उनसे बच जा रहे थे, मेरे को दोस्त बोले ना तुम हमारे को बोले कि नींद नहीं आए तो क्या तुम बोल के बोले अब क्या हुआ तुम्हारे को क्या हुआ बोल
1: हाँ
2: के
1: हाँ
2: बोले
1: सही बात
2: क्या
1: है।
2: करते ऐसा. तो वॉकिंग का मेरे को बहुत ही इंटरेस्ट था, वो तो बहुत बाद में शुरू करे समझो. तो बिकॉज ऑफ दी वॉकिंग वो तो डायबिटिक होने से डॉक्टर लगा दिया फोसिडमेटिव गो फॉर वॉकिंग, सो दैट ऑटोमेटिकली इट कैन बी क्यूर वेरी इजीली. तो ऐसा मैं वॉकिंग करना शुरू किया था. तो अभी भी क्या है नहीं होता, बिकॉज आएगा तो साइटी का पेन, सो ओनली योगा कर लेता हूँ. इसीलिए
1: ओके
2: वॉकिंग करना कंपल्सरी है, अच्छा है, वो हमारे से छुट गया तो है. तो लेट अस होप ए गुड डे. दैट्स ऑल, थैंक यू
1: ओके
2: माँ,
1: थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, थैंक यू
2: थैंक यू
1: श्रीनिवास
2: वेरी
1: गारू,
2: मच,
1: थैंक यू,
2: थैंक यू जी, थैंक
1: थैंक यू।
2: यू वेरी मच.
1: तो जी हाँ, ये थे श्रीनिवास जी, और इनका कहना तो आपने बिल्कुल सुना ही कि वॉकिंग जिनसे जिससे इनको काफ़ी सारा फायदा है आज की डेट में, बट काश इन्होंने पहले वॉकिंग स्टार्ट कर दी होती तो आई थिंक शायद शुगर की प्रॉब्लम जो इन्हें अभी है वो होती ही ना, है ना? बहुत सारे ऐसे एक्सरसाइजेज है, लाइक योगा है, प्राणायाम है, जो अगर हम अभी से कम एज से स्टार्ट कर दें तो आई थिंक हमें हेल्दी रहने से कोई नहीं रोक सकता, हमें फिट

0: से कोई नहीं रोक सकता, और हमें लंबा जीने से कोई नहीं रोक सकता, आई थिंक सो। एंड यस, इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। हमारे कुछ और कॉलर्स हैं जो हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो उनसे भी जुड़ेंगे एक छोटे से संदेश के बाद। सुनते रहिए।
1: తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఓటర్ జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ ఎస్ఐఆర్ 2026లో భాగంగా డ్రాఫ్ట్ ఓటర్ల జాబితాలో మీ పేరు ఉందో లేదో చెక్ చేసుకోండి. ఒకవేళ జాబితాలో మీ పేరు లేకపోతే కొత్తగా ఓటరు నమోదు చేసిన దానికి డిక్లరేషన్ ఫామ్ తో పాటు ఫామ్ 6, అభ్యంతరాలకు ఫామ్ 7, సవరణలకు ఫామ్ 8 ద్వారా ఆగస్టు 17 నుంచి సెప్టెంబర్ 16 లోపు ఆన్లైన్ లో voters.eci.gov.in వెబ్సైట్ ద్వారా లేదా ఆఫ్లైన్ లో ఈఆర్ఓ, ఏఈఆర్ఓ లేదా బిఎల్ఓకు మీరు దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. వివరాలకు టోల్ ఫ్రీ నెంబర్ 1950కు కాల్ చేయండి. జారీ వారు ప్రధాన ఎన్నికల అధికారి తెలంగాణ.
0: హలో, రెయిన్బో మే ఆప్కా స్వాగత్ హే, ఆర్ హమ్ జుడ్నే వాలే హే అప్నే నెక్స్ట్ కాలర్ కే సాథ్. ఆర్ దేఖియే, తీనో నంబర్ పే కాల్స్ ఆ రహే హే. అబ్ యే ఆప్కా లక్ హే, డిపెండ్ కర్తా హే కి మే కిస్కా కాల్ ఉఠాతి హూ. యహాన్ పే ముజే నహీ పతా హే కి హమారే జో లాస్ట్ అండ్ లకీ కాలర్ హోనే వాలే వో కౌన్ హోనే వాలే, తో దేఖతే హే. హలో రెయిన్బో. హలో
2: हेलो रेनबो, निशा जी नमस्ते.
0: हेलो रेनबो, नमस्कार. कौन बोल रहे हैं?
2: मैं मुमताज बात कर रही हूँ.
0: मुमताज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका. और बताइए कैसे हैं, खैरियत से हैं?
2: अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत इंतजार करा है निशा जी.
0: कोई बात नहीं है, इंतजार का फल मीठा होता है, पता है ना, सब्र का फल मीठा होता है.
2: बिल्कुल. तो सही बात, आज निचले उनको निचले क्या बोलते, पब्लिक को भी ख्याल रहना चाहिए, दूसरों को भी चांस देना. बहुत बहुत लंबी बात कर रहे, दूसरों को मौका ही नहीं दे रहे.
0: मैं अपनी तरफ से चाहती हूँ कि एकदम शॉर्ट में रखूँ, बट हो नहीं पाता है, उसके लिए माफी चाहूंगी.
2: ठीक है, कोई बात नहीं, आपकी तो गलती नहीं है. लोगों को समझ रहना चाहिए, दूसरों को भी मौका मिलना.
0: ओके,
2: आपको भी बहुत बहुत सलाम, और शेर खान को, शेर खान भाई को भी दिल से सलाम. दोनों इबादत करते, उनके तरफ से बहुत मेरे को खुशी मिलती, हमेशा उनकी बात सुन के इंतजार करती हूँ, उनके कॉल का, उनकी आवाज सुनने के लिए.
0: चलिए,
2: सलाम. और वो जो अश्विन भाई जी
0: ना, अश्विन जी,
2: और वो और अकाश भाई लोगों के मैसेज बहुत अच्छे नहीं थे, दिल से सुनती मैं, बहुत अच्छा लगता. और जो टॉपिक के बारे में बोले थे, मेरे को पढ़ने की ख्वाहिश थी निशा जी, मैं ब्लाइंड हूँ ना,
0: ओके ओके,
2: पढ़ने की ख्वाहिश थी, तो मैं अपनों से दूर नहीं जाना चाह रही थी. मैं पढ़ाई छोड़ती तो आज थोड़ा मुझे पछतावा होता.
0: ओके, काश पढ़ लेते हैं ना,
2: पढ़ लेते तो कुछ तो बनते थे, कुछ तो होता था. अगर शेर खान भाई तो 5 पारे कुरान तो आपको मालूम होगा ना, कुरान. हाँ, तो शेर खान भाई पढ़े 5, सुन के तो मेरे बहुत खुशी होती.
0: Okay.
2: हर बार उन्होंने पढ़ते रहते, इबादत करते रहते, बस दुआ में याद रखना है, उनको बोलना है. तो इसके लिए पुराना रफीक का गाना सुना दीजिए ना. नहीं,
0: पुराना कोई गाना?
2: हाँ
0: बिल्कुल,
2: मोहम्मद रफी का,
0: मोहम्मद रफी जी का गाना. ओके ओके, मैं कोशिश करती हूँ. एंड
2: आपसे
0: थैंक यू,
2: बात करके बहुत अच्छा लगा. थैंक यू,
0: थैंक यू सो मच. और इसी के साथ आपका सलाम आई थिंक सभी ने सुन लिया होगा, तो थैंक यू सो मच. और कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू, थैंक यू. तो जी था, जी हाँ, ये थी मुमताज़ जी. और इसी के साथ आई थिंक ये जो हेलो रेनबो का सिलसिला है, जो मैं चाहती नहीं हूँ कि मैं ख़त्म करूँ, बट मैं ख़त्म आई थिंक मुझे करना पड़ेगा फिलहाल के लिए, क्योंकि हमारे वो लिसनर्स जो सिर्फ हमें सुन पाए, आज हमसे जुड़ नहीं पाए, उनके लिए मैं कुछ सॉन्ग्स प्ले करना चाहूँगी. एंड जी हाँ, वेनु भी यहाँ पर आ चुके हैं, तो क्यों ना कुछ गाने प्ले किए जाए और उनसे मैं थोड़ा सा तेलुगु सीख लूँ. खैर, यहाँ पर आज के लिए हेलो रेनबो का सफ़र हम ख़त्म करते हैं, इस वायदे के साथ कि होगी आपसे फिर एक बार मुलाकात. और उस अगली मुलाकात तक अपना रखिए अच्छा सा ख्याल, अपने अपनों का रखिए अच्छा सा ख्याल, और सुनते रहिए FM रेनबो 101.9. फिलहाल के लिए मैं तो चलती हूँ, लेकिन आपको छोड़े जाती हूँ कुछ खूबसूरत गानों के सहारे. यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में, फ्रॉम द फिल्म सिलसिला. और जैसे कि रिक्वेस्ट है, मोहम्मद रफ़ी जी की आवाज़ में भी एक गाना आपको ज़रूर सुनवाएंगे. तो सुनते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, चाहे जो भी कीजिए, लेकिन यू नो, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि ज़िंदगी आसान वे में कटेगी अगर मुस्कुराते रहेंगे. तो खैर, मैं आपको आज के लिए

0: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 10 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की, आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: Hey, did you know the Kakatiya Kalatoranam is more than just a monument? Really? Tell me! That's what Telanganam is all about. Stories of our land, our art, our cinema.

ये आकाशवाणी हैदराबाद है 101.9 MHz पर। स्टूडियोज की घड़ी में 9:30 और 10 सेकेंड्स हो रहे हैं। पेश है उर्दू प्रोग्राम नए रंग।

बज़्मे नैरंग का आगाज होगा हरफे ताबिंदा से। पेशकश होगी मोहतरमा दुर्दाना मुस्कान की। हरफे ताबिंदा के बाद पेश होगा बिसाते गजल। बिसाते गजल सिलसिले के तहत आप जामिन अली हसरत का कलाम सुन सकेंगे।

0: सितंबर के पहले हफ्ते में यानी यकुम सितंबर ता 7 सितंबर नेशनल न्यूट्रिशन वीक मनाया जाता है। आज हम इसी सिलसिले में यानी नेशनल न्यूट्रिशन वीक पर बात करेंगे और कुछ फिल्मी नगमे भी आप सुन सकेंगे। बज़्म नरंग का इख्तिताम होगा जनाब नदीम अख्तर ज़ैदी के प्याम शब से। तो सामिन, ये थी आज पेश किए जाने वाले प्रोग्राम की तफसीलात। आइए आगाज करते हैं हरफे ताविंदा से। तहरीर व पेशकश है मोहतरमा दुर्दाना मुस्कान की।
1: इंसानियत की कदरें। सामाइन, कायनात में जितनी भी मखलूकात हैं इनमें सबसे अफजल, सबसे अशरफ और सबसे ज़्यादा अहमियत इंसान को दी गई है। इंसान को बेहतरीन सांचे में पैदा किया गया है और इसको अक्ल जैसी बेहतरीन शय से नवाजा गया है। कुदरत का अजीम कारीगरी का खूबसूरत नमूना इंसान है और इसके साथ साथ इंसान को इंसानियत के उम्दा ओहदे पर फायज किया गया है। इंसानियत इंसान की खूबी है और इसकी कई इकदार हैं। इन इकदार को समझकर, इनकी अहमियत को मद्देनजर रखकर जिंदगी जीने में ही दर हकीकत जिंदगी की कामयाबी है। इंसानियत की कदरों से मुराद खुश अखलाकी, ईमानदारी, वफादारी, दयानतदारी, अमानतदारी, हक व सदाकत, अदल व इंसाफ, मोहब्बत, शराफत, आजिज़ी, मुखलिसी, हिल्म व बुर्दबारी, सब्र व शुक्र, हमदर्दी, मुस्तकिल मिजाजी।

हरी पत्ते वाली सब्जियां और अंडों को इस्तेमाल करने का मशवरा दिया जाता है। विटामिन सी से भरपूर ग़िज़ाओं का भी इस्तेमाल करने का मशवरा दिया जाता है। आयरन के साथ साथ प्रोटीन भी इंतहाई ज़रूरी है। अक्सर हम ये सुनते हैं कि प्रोटीन का इस्तेमाल जिम जाने वाले अफराद के लिए ज़रूरी होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रोटीन सभी के लिए इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि प्रोटीन खलियात की तामीर करता है, पट्ठों की मजबूती और बाफतों की मरम्मत में अहम किरदार अदा करता है। अपनी ग़िज़ा में दाल, फलियां, दूध, दही, अंडे, मछलियां और सोयाबीन के साथ साथ खुश्क मेवेजात और बीजों को शामिल करना इंतहाई ज़रूरी है, ताकि मुसलसिल थकावट से बचा जा सके। समय इस बारे में हम बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे, लेकिन साथ साथ फिल्मी नगमे भी सुनेंगे, क्योंकि प्रोग्राम है गीत सुरीले गाते जा। तो आइए सुनते हैं एक और प्यारा सा गाना।

सविन, फिल्म मिस्टर इंडिया से लिया गया गाना आप सुन रहे थे। आवाज़ थी किशोर कुमार की, म्यूजिक डायरेक्टर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल थे और गीत के बोल लिखे थे जावेद अख्तर ने। ये आकाशवाणी हैदराबाद है 101.9 मेगाहर्ट्स पर और आप सभी सुन रहे हैं उर्दू प्रोग्राम नैरंग बज्म सजी है, गीत सुरीले गाते जासे। स्टूडियो की घड़ी में 10:06 और 46 सेकेंड्स हो रहे हैं। अपने हैदराबाद का पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा, हैदराबाद तो बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा, यहाँ पे फ्यूचर सिटी भी बनने वाला है। यहाँ पे बड़े बड़े बिल्डिंगा बन रही, कंपनियाँ खोल रही, लोगों की सहूलत के वास्ते रोडा, फ्लाईओवरा और ब्रिजा बनाते जा रहे। जिधर देखो उधर महंगे महंगे गाड़ियाँ भागते हुए दिख रही। तरक्की तो बहुत हो रही मगर एक्सीडेंटा भी हो रहे। ट्रैफिक पुलिस और लोगों की भलाई के वास्ते काम करने वाले तंजीमा अपनी पब्लिक को ट्रैफिक रूल्स बता बता के थक जा रहे। हेलमेट पहनो, सीट बेल्ट पहनो, एक्सीडेंटों से बचो बोल रहे, मगर अपने हैदराबादियाँ हैं कि सुन रहे नहीं। चालाना मारे तो भी पब्लिक को कोई फर्क नहीं पड़ा। मेरे को बस इतना ही बोलना है, रोडों पे गाड़ियाँ नको भगाओ, सीट बेल्ट और हेलमेट पहन के गाड़ियाँ चलाओ। अपन जब घर से निकलते तो अपने घर वाले अपने घर को आने का इंतज़ार करते रहते। अगर बगैर हेलमेट के और बगैर सीट बेल्ट के अगर गाड़ियाँ चलाएंगे तो घर को तो बाद में, पहले उस्मानिया नहीं तो गांधी को पहुँच जाते। रोड सेफ्टी अपने साथ साथ दूसरे लोगों के वास्ते भी बहुत ज़रूरी है। तो रोड सेफ्टी के रूल्स को फॉलो करो, घर को सही सलामत पहुँचो, हेलमेट और सीट बेल्ट पहन के गाड़ियाँ चलाओ। समय नेशनल न्यूट्रिशन वीक पर हम बात कर रहे थे। जैसा कि आगाज़ में हमने आपको बताया था कि जो नौजवान नस्ल है, जो कम उम्र अफराद हैं, चाहे नौजवान लड़के हो या लड़कियां, वो बहुत जल्द थकान महसूस कर रहे हैं। बिना मशक्क़त के ही वो थकान महसूस होने की शिकायत करने लगे हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक मसरूफ़ औकात, तनाव, नींद की कमी और गैर सेहत बख्श गज़ा का इस्तेमाल उनकी थकन का सबब बन सकता है। कई वजूहात भी बताई गई हैं, जैसे कि आयरन की कमी, प्रोटीन की कमी की वजह से और दीगर वजूहात की वजह से थकान महसूस होती है। तिबी माहरीन के मुताबिक विटामिन B12 भी इंतहाई ज़रूरी है। ये सुर्ख खून के खलियात बनाने और आसाबी निज़ाम को दुरुस्त रखने के लिए ज़रूरी है। डॉक्टर्स ने मशवरा दिया है कि थकान से बचने के लिए विटामिन B12 को अपनी खुराक का हिस्सा लाजमी बनाना चाहिए। मुनासिब मकदार में पानी ना पीने की वजह से भी थकान महसूस होती है, इसीलिए वक्तन फ़ौक्तन पानी पीते रहना चाहिए। मौसम गर्मा में तो हम पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन दीगर मौसमों में भी, चाहे मौसम बरसात हो या फिर मौसम सरमा, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल

किया जाना चाहिए और वर्जिश करने के बाद भी पानी का वाफर मकदार में इस्तेमाल ज़रूरी है। इसके साथ साथ नींद भी इंतहाई ज़रूरी है। अगर मुनासिब नींद नहीं मिलेगी तो भी हम थकान महसूस करते हैं। समय बातचीत का सिलसिला तो जारी रहेगा, लेकिन आइए सुनते हैं एक और प्यारा सा नगमा जिसे हमने लिया है फिल्म सरगम से। आवाजें हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की।

फिल्म दोस्ती से लिया गया प्यारा सा गाना आप सुन रहे थे। आवाज थी मोहम्मद रफी की, म्यूजिक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था, गीत के बोल लिखे थे मजरूह सुल्तानपुरी ने। यह आकाशवाणी हैदराबाद है 101.9 MHz पर और आप सुन रहे

फिल्म करसिलिया गीत आप सुन रहे थे, आवाज थी मोहम्मद रफी की। सामईन, गीत सुरीले गाते जामे हम नेशनल न्यूट्रिशन वीक के तहत बात कर रहे हैं कि नौजवान तबका क्यों आजकल इंतहाई थकान महसूस कर रहा है। कुछ वजूहात भी हम आपको बता चुके हैं। इम्तिहानात के शदीद दबाव, मुस्तकबिल के हवाले से बेयकीनी और सोशल मीडिया पर परफेक्ट नज़र आने की दौड़ ने नौजवानों को मुसलसल जहनी तनाव में मुबतला कर रखा है। आपको बता दें कि तनाव के दौरान जिस्म में कॉर्टिसोल नामी हार्मोन की ज़्यादती रहती है, जो तवील मुद्दत में आसाबी निज़ाम को थका देती है और फिर हम हर वक्त निढाल और थके हुए महसूस करते हैं। सेहतमंद जिंदगी के लिए थकान को दूर करने के लिए कुछ तिब्बी मशवरे माहिरीन ने दिए हैं। उनका कहना है कि सिर्फ पेट भरना काफी नहीं है, बल्कि खुराक में विटामिन डी, विटामिन B12 की मकदार को यकीनी बनाया जाए, क्योंकि विटामिन डी की कमी हड्डियों के दर्द और शदीद थकान का सबसे बड़ा सबब बनती है। सुबह की हल्की धूप में बैठना भी इंतहाई मुफीद है। हाइड्रेशन यानी पानी का मुनासिब इस्तेमाल, इस हवाले से हम आपको पहले भी बता चुके हैं। रोजाना कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी पीना लाजमी है। सुस्ती को भगाने का बेहतरीन इलाज हल्की फुल्की वर्जिश या चहलकदमी है। रोजाना 30 मिनट की वर्जिश जिसमें तवानाई पैदा करती है। इसके साथ साथ बाजारी खानों से भी परहेज करने की जरूरत है। जंक फूड, एनर्जी ड्रिंक्स और कोल्ड ड्रिंक्स वक्ती तौर पर तवानाई देते हैं, लेकिन खून में शुगर की सतह को अचानक गिराकर शदीद थकान का बास बनते हैं। बजाय इन चीजों के फलों का इस्तेमाल किया जा सकता है। खुश्क मेवेजात और घर के बने ताजा खानों को तरजीह देकर सेहतमंद रहा जा सकता है। इसके साथ साथ कम से कम 8 घंटे की गहरी नींद को अपना मामूल बनाना चाहिए। सोने से कम 1 घंटा पहले तमाम डिजिटल आलात जैसे कि मोबाइल, टैब या फिर लैपटॉप से दूरी इख्तियार करना भी जरूरी है, ताकि दिमाग को पुरसुकून होने का मौका मिल सके। समय बातचीत का सिलसिला तो जारी रहेगा, अब वक्त हो चला है एक और गीत का।

समय अनाड़ी फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। गीत को आवाज दी थी मुकेश कुमार ने। समय गीत सुरीले गाते जा का सिलसिला जारी है और हम अब तक बात कर रहे थे कि नौजवान तबका बिना किसी मशक्कत के क्यों थकान महसूस कर रहा है। अब हम एक और अहम मौजू पर आपकी तवज्जो चाहते हैं। गुज़िश्ता चंद हफ्तों के दौरान H1N1, जिसे इन्फ्लुएंजा या स्वाइन फ्लू भी कहा जाता है, के मामलात में इजाफा हो रहा है। ताहम हुकूमत हिंद और माहिरीन सेहत का कहना है कि घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें एहतियात करने की जरूरत है। मरकज की वजारत सेहत की जानिब से चंद एहतियाती तदाबीर जारी की गई हैं। और H1N1 की अलामत क्या होती हैं, उसके बारे में भी बताया गया है। चलिए हम आपको बता दें कि H1N1 की अलामत में आमतौर पर बुखार, खांसी, गले में खराश, जिस्म में दर्द, सरदर्द और थकन शामिल हैं। और अगर ये अलामत पाई जाती हैं तो फौरी तौर पर खुद से इलाज करने के बजाय डॉक्टर से रुजू करने की जरूरत है। समय इस हवाले से हम और भी कुछ बातें आपसे करना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले सुनते हैं एक और गाना।

समय फिल्म कन्यादान से लिया गया गीत अभी आप सुन रहे थे। गीत गाया था मोहम्मद रफ़ी ने, म्यूजिक डायरेक्टर शंकर जयकिशन और गीतकार थे नीरज। ये आकाशवाणी हैदराबाद है 101.9 MHz पर और आप सभी सुन रहे हैं उर्दू प्रोग्राम नैरंग। अगर आप अभी अभी हमसे जुड़े हैं तो हम आपको बता दें कि मुल्क में H1N1, जिसे इन्फ्लुएंजा या स्वाइन फ्लू भी कहा जाता है, उसके मामलात में इजाफा हो रहा है। कुछ अलामत भी सामने आई हैं और अगर किसी शख्स में ये अलामत पाई जाती हैं तो उन्हें फौरी तौर पर खुद से अपना इलाज करने के बजाय डॉक्टर से रुजू करने का मशवरा दिया जाता है और चंद एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने को कहा गया है। सेहत के माहरीन का कहना है कि H1N1 से बचाव के लिए बार बार हाथ धोना जरूरी है, खांसते या छींकते वक्त मुंह और नाक को ढकना चाहिए और बीमार होने की सूरत में दूसरों से फासला रखा जाना चाहिए और H1N1 जैसी अलामत जाहिर होने पर मास्क पहनना लाजमी है। इसके अलावा घर और दीगर जगहों पर हवा की मुनासिब आमदोरफ्त बरकरार रखना जरूरी है। बार बार छुए जाने वाले सतहों को जरासीम से पाक रखना भी इंतहाई जरूरी है।

आपको हम ये बताना चाहते हैं कि सेहत के माहिरीन ने ये कहा है कि डॉक्टर के मशवरे के बगैर एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल ना की जाए। अक्सर ये होता है कि हम सर्दी खांसी या फिर बदन दर्द का शिकार होने पर डॉक्टर के मशवरे के बगैर एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल कर लेते हैं। अब ऐसा बिल्कुल भी ना करने का मशवरा दिया गया है, क्योंकि H1N1 एक वायरल बीमारी है। जो अलामात आपको बताई गई हैं, जैसे कि बुखार, खांसी, गले में खराश, जिसमें दर्द, सरदर्द और थकन वगैरह, अगर ये अलामात जाहिर होती हैं तो एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करने के बजाय फौरी तौर पर डॉक्टर से रुजू करें, क्योंकि H1N1 एक वायरल बीमारी है और एंटीबायोटिक्स जो होते हैं वो वायरस पर असर नहीं करते। अलबत्ता अगर साथ पे बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो तो फिर डॉक्टर की हिदायत पर एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो सामईन, ये कुछ एहतियाती तदाबीर हैं जिन पर हम अमल करते हुए H1N1, जिसे इन्फ्लुएंजा भी कहते हैं, उससे महफूज रह सकते हैं।

साल का जो मौजू था, जो थीम थी, हमें उसे साल भर याद रखने की जरूरत है। अपनी थाली में हरी सब्जियां, ताजा फल, दालें, अनाज और प्रोटीन को जगह देकर हम बहुत सी खतरनाक बीमारियों से बच सकते हैं। समय गीत सुरीले गाते जा आप सुन रहे थे। अब वक्त हो चला है पयाम शब का। लीजिए समात फरमाइएगा जनाब नदीम अख्तर जैदी से पयाम शब।

ये आकाशवाणी हैदराबाद है 101.9 MHz पर। स्टूडियोज की घड़ी में 11 बजने ही वाले हैं। चंद ही लम्हों में आप सुन सकेंगे हिंदी और अंग्रेजी समाचार जो कि दिल्ली से नश्र किए जाएंगे।

0: रक्षा खरीद परिषद ने सशस्त्र बलों के लिए 1,10,000 करोड़ रुपए से अधिक के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई परिषद की बैठक में दी गई। परिषद की बैठक में सेना के लिए रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और परमाणु टोही वाहन, हाई मोबिलिटी वाहन, स्वचालित माइन लेयर, एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर, ट्रॉल टैंक और सर्वत ब्रिज सिस्टम की खरीद को मंजूरी दी गई। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि 98% खरीद भारतीय उद्योग से की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात यात्रा पर रहेंगे। श्री मोदी राज्य में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। अहमदाबाद में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि पूर्वी और पश्चिम समर्पित माल ढुलाई गलियारे देश के परिवहन और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र की महत्वपूर्ण आधारभूत संरचना है।
1: डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ईस्ट और वेस्ट, ये दोनों देश के लिए बहुत बड़ी एक बैकबोन की तरह है ट्रांसपोर्टेशन में। वो प्रोजेक्ट अब कंप्लीट हुआ पूरी तरह से, उसको माननीय प्रधानमंत्री जी कल राष्ट्र के प्रति समर्पित करेंगे। ये परियोजना ऐसी है जिसमें कई वर्ष लगे, 2014 में प्रधानमंत्री ने उस काम को हाथ में लिया, हाथ में लेके जितनी भी उसमें प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व किया और अब कंप्लीट हुआ।
0: प्रधानमंत्री कल शाम मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी सम्मेलन को संबोधित भी करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने आज गोवा पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान किया। इस अवसर पर गृहमंत्री ने गोवा पुलिस की सेवा, व्यावसायिकता, साहस और अनुशासन की सराहना की।
2: 8 दशकों की गौरवशाली गोवा पुलिस की सेवा राष्ट्रपति जी के दिए हुए निशान के साथ देश भर की पुलिस की कतार में खड़ी है। ये गौरव जिन जिन राज्यों की पुलिस को मिला वो पुलिस के गौरवशाली इतिहास, साहस, अनुशासन और समर्पण के कारण ही राष्ट्रपति महोदय ने गोवा को प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित करने का काम किया है।
0: इससे पहले गृहमंत्री ने आज गोवा के पणजी में पश्चिम क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता की। श्री शाह ने कहा कि पश्चिमी क्षेत्र के राज्यों के बीच अब कोई विवाद नहीं है। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने कहा है कि सरकार ने तेल विपणन कंपनियों को घरेलू रसोई गैस एलपीजी रिफिल बुकिंग के नियमों में बड़ी ढील देने का निर्देश दिया है। अब देश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सभी घरेलू एलपीजी उपभोक्ता 25 दिनों के अंतराल पर सिलेंडर बुक करा सकेंगे। श्री गोपी ने कहा कि देश में एलपीजी आपूर्ति में सुधार और बैकलॉग में आई भारी कमी को देखते हुए केंद्र सरकार ने ये पाबंदी हटाई है। निर्वाचन आयोग ने असम की नागांव लोकसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा की है। इसके साथ ही तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की दो दो विधानसभा सीटों और पुदुचेरी की एक सीट पर उपचुनाव की घोषणा की गई है। आयोग ने बताया कि तमिलनाडु की मदुरंतकम और धर्मपुर सीट, पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम सीटें तथा पुदुचेरी की थट्टन चावड़ी विधानसभा सीट पर मतदान होगा। मतदान 6 अक्टूबर को और मतगणना 9 अक्टूबर को होगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि सत्य निकेतन इमारत के मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके साथ ही लापरवाही बरतने के आरोप में नगर निगम के 5 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कड़ा रुख अपनाते हुए पूरी दिल्ली में 5वीं मंजिल वाली इमारतों को तुरंत सील करने के आदेश दिए हैं। दक्षिण लेबनान में इसराइल के हवाई हमलों में 12 लोगों की मौत हो गई है। कफर रोमाने गांव में एक रिहायशी इमारत पर हुए हमले में 11 लोग मारे गए जिनमें 2 बच्चे और 4 महिलाएं शामिल हैं। शीतल देवी ने विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला में महिला कंपाउंड के व्यक्तिगत वर्ग के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। अहमदाबाद में सेमीफाइनल में शीतल देवी ने सरिता को हराया। कांस्य पदक के मुकाबले में सरिता चीन की वांग हुईटिंग से खेलेंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आर एस रघु।

0: This is Akashwani. Good evening and welcome to Market Mantra. Today being Monday, we'll be taking your calls on your market-related queries. But do remember that we do not address stock or company-specific queries. You can call us on our telephone numbers 2331-4444, 2331-0481 and 2371-7106. And of course, do not forget to prefix 011 before these numbers, the Delhi STD code if you're calling from out of Delhi. Well, my name is Nishit Kumar and with me is my co-anchor in Hindi, Prachi Priya.
1: Namaskar, Market Mantra mein aapka abhinandan. Shrotaon, vyapar, arthvyavastha aur share bazaar se juda koi bhi prashn poochne ke liye aap dial kijiye 2331-4444, 2331-0481 और 2371-7106. दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबर्स से पहले दिल्ली का एसटीडी कोड 011 भी जरूर डायल करें, लेकिन याद रखें कि हम किसी खास शेयर या कंपनी से जुड़े सवाल इस कार्यक्रम में उसके जवाब हम नहीं दे पाएंगे. चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में आमंत्रित हैं मार्केट विशेषज्ञ शरद कोहली. शरद जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन.
2: नमस्कार प्राची, नमस्कार निशित और सभी श्रोताओं को मेरा अभिनंदन.
1: आइए श्रोताओं, एक नजर डालें आज की आर्थिक सुर्खियों पर.
0: The benchmark domestic indices decline, Sensex slips nearly 400 points, Nifty settles below 23,800. The global crude oil prices rise and Prime Minister Narendra Modi to address the Global FinTech Fest 2026 in Mumbai tomorrow.
1: प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांकों में गिरावट, सेंसेक्स लगभग 400 अंक फिसला, निफ्टी 23,800 के नीचे बंद हुआ. दुनिया भर में कच्चे तेल के दाम बढ़े और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 को संबोधित करेंगे.

0: और अब जानेंगे रुपए का हाल। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज एक डॉलर की तुलना में अपरिवर्तित रूप से 94.49 रुपए पर बंद हुआ। इसी के साथ कोलकाता से पहली कॉल हम ले रहे हैं, इनका नाम है अरिजीत। अरिजीत, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
1: थैंक यू एंड गुड इवनिंग टू मार्केट मोहन मुद्रा एंड शरद जी, वेरी बिग फैन।
2: गुड इवनिंग
1: सर, मेरा दो सवाल है आपसे
2: जी।
1: पहला तो ये है कि प्रोविडेंट फंड का कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका है अभी करेंटली, और पहले और सेकेंड मेरा बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि मेरा एक प्रोविडेंट फंड और एक शेयर का एक बात है, तो वो दे आर इन द प्रोसेस, मगर जो लोग डील कर रहे थे वो लोग बोल रहे कि मेरा कोई हेल्थ, मेरे फैमिली में कोई जिंदा नहीं है, तो मेरा कोई नॉमिनी नहीं है। वो लोग बोल रहे कि अगर नॉमिनी का नाम मैं नहीं डालूं तो वो गवर्नमेंट से वो पैसा रिलीज नहीं करेंगे, क्या ये सच है या झूठ?
2: देखिए अरिजीत, अगर आप पहले आपका दूसरा वाला सवाल लेते हैं, अगर नॉमिनी का नाम नहीं है तो इसमें फिर प्रोसेस थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाता है, क्योंकि आपको कोर्ट से एक सक्सेशन सर्टिफिकेट फिर लेना पड़ता है, और उस कोर्ट से सक्सेशन सर्टिफिकेट लेके उसके आधार पर फिर डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। तो बेहतर तो यही है कि आप नॉमिनी रखें, या फिर जिस डिपार्टमेंट से आप लेना चाहते हैं उस डिपार्टमेंट का जो इंटरनल प्रोसीजर है उस प्रोसीजर का आपको ध्यान रखना चाहते हैं लिखना चाहिए। और दूसरा आपका पहला सवाल पीएफ का इंटरेस्ट रेट तो मेरे ख्याल सभी लोग जानते हैं, आई थिंक इट इज अबाउट 7 पॉइंट, पीपीएफ का 7.1 है, पर पीएफ का शायद ये पूछ रहे हैं, पीएफ का 8.25 के आसपास है। पीपीएफ का इंटरेस्ट रेट थोड़ा कम होता है, आप ये शायद प्रोविडेंट फंड का जानना चाहते थे, 8.25 के आसपास है। पर आप, मैं आपको सलाह ये दूंगा कि आप गवर्नमेंट जिस डिपार्टमेंट से आप लेना चाहते हैं वहां संपर्क करें, क्योंकि कई दफे क्या होता है कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स के पोस्थ्यूमस प्रोसेस अलग होते हैं, बाकी जो लीगल प्रोसेस है वो या तो सक्सेशन सर्टिफिकेट लेके होता है या फिर आप नॉमिनी के थ्रू उसको ले सकते हैं।
3: राइट, टॉकिंग ऑफ द मार्केट्स टुडे शरद जी, व्हाट वी आर विटनेसिंग ओवर द पास्ट फ्यू सेशंस ऑफ कोर्स इज not surprising though, but still there is some factor of concern as well. How do you visualize this? How do you perceive this?
2: Well, I think Nishit, the markets are looking right now more outwards. If markets look internally to the country, we had 7.8% GDP. We had all the four cylinders of the economy, the private consumption, government expenditure,
0: right.
2: Private investments, exports, they are all shining. But somehow I think I was talking to another platform today, and I said the markets seem to be looking more outwards, because the markets look at West Asia, crude oil prices, aggression between Iran and US, bond yields, dollar index. I think those are the factors which are sort of overshadowing our internal growth at this point of time. So I'm sure, in fact, through Market Mantra today, there are a lot of market operators who listen to this program. I would like to request to please start looking inwards. Look at what is happening within the country. They seem to be becoming more international, but in the process, they are looking at all the negative things which are coming out. Obviously, it does depress the sentiment, but within our country, we are doing fairly okay. So I think the day we start looking inwards, you will find the market, and market today broke a very important technical level of 23,850 on the technical charts. And this becomes a matter of concern, because there could be further slide, I hope. And the crude oil prices, look at them. They were getting closer and closer to 100. The Indian basket of crude is beyond 100 now. In fact, we are heading for a time where the oil marketing companies may have to at some point of time take a call to invoke another rise in petrol and diesel prices. So those concerns are, I think, counting on the minds.
0: बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने बताई।
3: And let's not forget the black sheep in the lot, Mr. Trump as well.
2: Oh yeah, he's always in the news.
0: आगे बढ़ते हैं और अगली कॉल लेते हैं, ये है मुंबई से रत्नाकर। महोदय, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
4: हेलो, गुड इवनिंग मैडम। मेरा सवाल है कि ये जो फॉरेक्स ट्रेडिंग जो होता है
2: जी,
4: उसके बारे में रिटेल इन्वेस्टर के लिए, समझो कॉमन मैन को उसमें एंट्री करना है तो कैसे कर सकते हैं, और वो डिजिटली प्लेटफॉर्म क्या है उसका, और उसमें क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, उसके बारे में थोड़े बताइए। और दूसरा मेरा सवाल है कि ये जो अभी एक न्यूज आई थी कि जीडीपी रेट अपना बढ़ने वाला है 7 पॉइंट और कुछ, तो उसका कॉमन मैन के ऊपर, नहीं तो ये जो एफएमसीजी सेक्टर है, नहीं तो खुदरा बाजार है, उसमें उसका क्या ये परिणाम हो सकता है.
2: ओके, उसके बारे में दोनों सवाल रत्नाकर जी के बहुत

0: अच्छे हैं, आज बहुत दिनों बाद इनसे बात करने का मौका मिला। फॉरेक्स ट्रेडिंग रत्नाकर जी, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, क्योंकि हम यहाँ निजी प्लेटफॉर्म्स का नाम तो नहीं लेते हैं, तो इसलिए मैं आपको कोई ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म तो यहाँ नहीं बता पाऊंगा, पर अगर आप ऑनलाइन जाएंगे, पर मैं आपको एक एक तरीके से सतर्क जरूर करना चाहता हूँ कि जो फॉरेक्स ट्रेडिंग होती है वो भी बहुत वॉलेटाइल ट्रेडिंग होती है। आप विभिन्न करेंसीज को आप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स लेते हैं, आप अनुमान लगाते हैं कि 15 दिन बाद डॉलर बढ़ जाएगा, यूरो बढ़ जाएगा, येन बढ़ जाएगा, ब्रिटिश पाउंड बढ़ जाएगा, घट जाएगा, जो भी आप करते हैं, तो थोड़ा सा जोखिम भरा काम है, क्योंकि इसमें बहुत शार्प मूवमेंट्स होते हैं और बहुत तेज़ी से मूवमेंट होते हैं और 24 घंटे होती है ये। तो आप तो रात को सो रहे होते हैं, मैं उम्मीद तो यही करता हूँ, तो जब आप सो रहे होंगे और रात को उस समय मान लीजिए कीमत जो आप तलाश रहे हैं वो कीमत उस समय आई, तो आप कैसे उसमें से निकल पाएंगे, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या रहेगी। तो उसमें बहुत ही एक्टिव और 24 घंटे की मॉनिटरिंग उसमें चाहिए होती है। और दूसरा आपने पूछा जीडीपी का, 7.8% का कॉमन मैन पे जीडीपी का, देखिए रत्नाकर जी उसका इम्पैक्ट लगभग लगभग सभी सेक्टर्स पर पड़ता है, और चाहे एफएमसीजी हो, चाहे वो स्टील सेक्टर हो, चाहे वो डिफेंस सेक्टर हो, क्योंकि जीडीपी जब बढ़ती है तो वो ओवरऑल बढ़ती है, वो ऐसा नहीं है कि कोई एक सेक्टर बढ़ता है, हर सेक्टर पे इसका इम्पैक्ट अलग अलग किस्म का होता है। तो इसलिए संक्षेप में तो मैं यही बता सकता हूँ, बाकी आपने जो सवाल पूछा उसका बहुत विस्तृत जवाब है और बहुत लंबा डिस्कशन मांगता है। मैं देख रहा हूँ स्क्रीन पे कि दो लोग और क्यू में हैं, तो
1: बिल्कुल शरद जी, क्योंकि समय की परिधि है और भी कॉलर्स हमें कॉल कर रहे हैं, तो दिल्ली से प्रकाश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रकाश जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
2: हेलो
1: जी,
0: जी प्रकाश जी बताइए।
2: हाँ जी, मार्केट मंत्र टीम पे नमस्कार।
0: नमस्कार
2: शरद जी को भी नमस्कार सर।
0: बिल्कुल नमस्कार
2: सर, मेरा एक छोटा सा सवाल है
0: जी,
2: कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है
0: जी,
2: क्या वो नेग्लिजिबल भी हो
0: जी,
2: तो भी क्या उसके लिए ITR 2 भरना पड़ता है? क्योंकि अगर कोई मैं SIP कर रहा हूँ
0: तो
2: जो इंस्टॉलमेंट एक साल के कम अवधि की है वो मैं रिडीम कर देता हूँ, तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में जरूरी है कि ITR 2 भरा जाए?
0: नियम तो यही है प्रकाश जी के, अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो आपको ITR 2 भरना चाहिए। सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो और एक मकान हो और 50 लाख से कम आए हो तो आप जो सरल फॉर्म है फॉर्म 1, बाकी नियम तो यही है। पर प्रकाश जी आपके, मुझे लग रहा है आपका कंसर्न शायद इसलिए है, और मैं प्राची और निशित को भी बताऊं, क्योंकि ITR 2 थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, थोड़ा सा लंबा होता है, पर आपको सच बताऊं तो तभी तक कॉम्प्लिकेटेड है जब तक आपने उसको खोल के नहीं देखा। बहुत बहुत प्रोग्राम्ड है, हर चीज का नीचे एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है, आगे क्या करना है ये लिखा हुआ है, उसको इतना सिस्टमैटिक बना दिया गया है। तो प्रकाश जी घबराइए नहीं, आप ITR 2 भरिए और आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। कोई परेशानी आती है तो आप अगले कार्यक्रम में हमसे दोबारा यहाँ मार्केट मंत्रा में जुड़ के कभी भी पूछ सकते हैं।
1: जरूर, दिल्ली से हमारे साथ अमित झा जुड़ रहे हैं। अमित जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, अपना सवाल।
3: हाँ नमस्कार सर, कोहली सर से मेरा प्रश्न सर ये है सर
0: जी,
3: कि 2025 फर्स्ट क्वार्टर में हमारी GDP 6.9% थी सर
0: जी,
3: और 2026-27 में अभी हम पहले तिमाही में 7.8 पे आ गए हैं
0: जी।
3: तो मैं सर यही आपसे जानना चाहता हूँ, ऐसे कौन से की फैक्टर, कौन से मतलब इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ा है, गवर्नमेंट की इनकम बढ़ी है, या फिर IIP का डेटा बढ़ा है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर इतने तेजी से बढ़े हैं ताकि हम 6.9 से 7.8 आए? हालांकि अच्छी चीज है, गुड है। और सर एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से जुड़ा सवाल है सर
0: जी,
3: तो मेरा शंका ये है सर कि जैसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बड़ी अच्छी चीज है कि कर मुक्त मतलब टैक्स फ्री हमारा सामान दूसरे देश हमारे देश में आ जाएगी, हमारी पहुंच बढ़ेगी, लेकिन सर मुझे ये भी डर लगता है कि हम जिन देशों से आयात निर्यात कर रहे थे तो इससे ट्रेड बैलेंस पे कोई इम्पैक्ट तो नहीं आएगा? जैसे मान लो हम 100 रुपए की चीज एक्सपोर्ट करते हैं सर, तो हम टैक्स रेवेन्यू हमारे 20% के हिसाब से 20 रुपए बनता है मान लीजिए, और हम उनसे आयात करते हैं 50 रुपए का, तो उनको हम 20% अगर हम टैक्स देते हैं 10 रुपए का टैक्स देते हैं, ओवरऑल में हमें 10 रुपया नेट प्रॉफिट में आता है, तो ये ट्रेड बैलेंस गड़बड़ तो नहीं हो सकता सर? धन्यवाद सर।
0: चलिए, इनका पहला सवाल जीडीपी से संबंधित है, अभी पिछले श्रोता में भी शायद उन्होंने रत्नाकर जी थे, उन्होंने ही पूछा था। तो देखिए बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं, जब अमित देखा जाता है इसमें, हमारा जो ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन है वो भी बढ़ा है, हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने फायर किया है वो सिलेंडर भी बढ़ा है, हमारा सर्विसेज सेक्टर भी बढ़ा है, सबकी परसेंटेजेस हैं जो बढ़ा है। उसके अलावा 4 सिलेंडर्स की मैंने बात करी थी, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स, गवर्नमेंट केपेक्स, کنزمپشن ہماری بڑی ہے, اس کے علاوہ ایکسپورٹس بھی ہمارے 10-12-11-9-10% بڑھے ہیں. تو چاروں انجنز نے فائر کیا. اور میں یہاں پر پراچی اور نشت کی اجازت سے یہ بھی بتانا چاہوں گا, بہت سارے لوگ اس کو آلوچناتمک درشٹی سے دیکھ رہے تھے.

0: अभी 7.8 बढ़ी है, तो फील गुड फैक्टर नहीं है। तो आप अर्थव्यवस्था जब बढ़ती है तो उनके नंबर्स को हमें देखना चाहिए, और भारत जैसी कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी में हर व्यक्ति ये उम्मीद रखता है कि 7.8% मेरी जेब में आया कि नहीं आया, जबकि ऐसे नहीं होता। ये अभी एक क्वार्टर की है, कालांतर में जब लगातार तेज बढ़ती है तो पंक्ति में खड़ा अंतिम व्यक्ति को भी इसका लाभ मिलता है। इनका दूसरा सवाल, एफटीए से तो कोई ट्रेड बैलेंस नहीं बिगड़ेगा हमारा, हमें इससे तो उल्टा सुधरेगा, क्योंकि ट्रेड डेफिसिट तो हमारा कम होता है, क्योंकि अब हम एक्सपोर्ट ज्यादा करेंगे और इंपोर्ट तो हमें जितना जरूरत है उतना करेंगे, पर हमारा सामान यहां से $860 बिलियन का हम साल का एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो मुझे लगता है उसकी उसकी गिनती बढ़ेगी, उसकी वैल्यू बढ़ेगी, और भारतीय एमएसएमई के लिए, एक्सपोर्टर्स के लिए नई नई अपॉर्चुनिटीज निकलेगी। आप डर दिमाग से निकाल दीजिए, हमें तो आपके मन में आपने कहा कोई डर है, कोई डर नहीं है, तो प्रशंसा की बात है, तारीफ की बात है, खुश होने की बात है।
1: दिल्ली से हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ रहे हैं, इनका नाम है वत्सराज। महोदय कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
2: नमस्कार। नमस्कार मार्केट मंत्रा टीम।
1: नमस्कार
2: शरद कोहली जी को प्रणाम।
0: प्रणाम।
2: सबसे पहले थैंक यू करना चाहूंगा शरद कोहली जी को, क्योंकि जितनी सरल भाषा में ये सारी चीज हमें बताते हैं वो बिल्कुल खाने में बैठ जाती है।
0: धन्यवाद। सवाल पूछिए।
2: मैं सर आपकी एक सहमति चाहता हूँ, पिछले आपके सेशन में एक क्वेश्चन आया था
0: जी,
2: और उसका आपने आंसर किया था। एक क्वेश्चन था कि कितना मैक्सिमम प्रॉफिट बुक एलटीसीजी या प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए आदमी को, अगर उसको प्रॉफिट हो रहा है
0: जी।
2: तो मैं सहमति ये चाहता हूँ कि मिनिमम क्या इतना बुक कर लेना चाहिए जितना गवर्नमेंट हमें रिबेट देती है, 1 लाख या 1.25 लाख के करीब जो रिबेट देती है उतना तो मिनिमम बुक कर लेना चाहिए। क्या मैं इस मामले में सही हूँ?
0: वत्सराज जी, ये इसको हम टैक्स हार्वेस्टिंग कहते हैं जो आप कह रहे हैं। टैक्स हार्वेस्टिंग का मतलब होता है जो 1,25,000 का इक्विटी पे हमको छूट मिलती है, पहले सेक्शन 112A उसको कहते थे, जो पुराने एक्ट में अभी लोगों के मुंह पे वही चढ़ा हुआ है, तो मैं नए सेक्शंस अभी नहीं बोल रहा हूँ, तो कर लेना चाहिए। पर इसमें खाली टैक्स वत्सराज जी एक कंसिडरेशन नहीं है, मैंने जो बताया था क्योंकि मार्केट जिस प्रकार से इस समय बिहेव कर रहा है, हो सकता है कोई वेस्ट एशिया से अभी जो खबरें आ रही हैं शायद और मामला बिगड़ जाए, क्रूड ऑयल की कीमतें 100 के आसपास जा रही हैं, तो टैक्स तो एक मैटर होता है। और मैं समझता हूँ आप जो बात कह रहे हैं वो सामान्य परिस्थिति में होता है कि आपने टैक्स हार्वेस्टिंग कर ली, कि आपने बुक कर लिया और फिर उसको री इन्वेस्ट कर दिया। पर इस समय अगर प्रॉफिट अच्छा है, ये बहुत सब्जेक्टिव सवाल है वत्सराज जी आपका, कि कितना प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, तो पर्सन टू पर्सन, सिचुएशन टू सिचुएशन डिफर करेगा, अलग होगा। पर मैं ये मानता हूँ प्रॉफिट इन द बैंक इज बेटर देन प्रॉफिट इन द बुक्स। मुझे लग रहा है अगर ऐसे वक्त में मुनाफा है तो बुक करके चलना चाहिए। इस समय 1,25,000 टैक्स को आप सेकेंडरी कंसिडरेशन रखिए और प्रॉफिट को आप मुख्य रखिए। मुख्य और गौण कहते हैं अगर हिंदी में, मेरी हिंदी अगर मैं ठीक मुझे बता रही है, तो मुख्य रखिए आप प्रॉफिट को, टैक्स को गौण रखिए, पर 1,25,000 अगर हो रहा है तो अच्छी बात है।
1: आइए जानते हैं क्या है अगला सवाल। नोएडा से हमारे साथ विनय कुमार जुड़ रहे हैं। विनय जी कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
3: बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सारे मार्केट मंत्र टीम का अभिनंदन करता हूँ।
0: धन्यवाद।
3: शरद कोहली साहब का मैं भी एक फैन हूँ।
0: माई प्लेजर सर।
3: मेरा प्रश्न आज ये है कि अभी पूरी शेयर मार्केट में काफी अनिश्चितता है और आज काफी बड़ा इम्पोर्टेंट लेवल भी 23,850 का टूट गया है
0: जी।
3: तो इस समय में रिटेल इन्वेस्टर की क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए सर?
0: बहुत अच्छा सवाल है विनय। देखिए मार्केट के बारे में मेरा नजरिया अभी तक जो रहता था, प्राची निशित जानते हैं, मैं हमेशा ये कहता था कि मार्केट में आप लंबे वक्त के लिए बने रहिए, थोड़ा थोड़ा करके निवेश करिए। थोड़ा सा ये जो हाल में डेवलपमेंट्स हुए इसमें मेरे नजरिए में मैंने समय अनुसार बदलाव किया है और मैं आज इनकी इजाजत से वो बदलाव बताना चाहूंगा। बदलाव ये है कि मुझे यहां से मार्केट के लिए थोड़ा सा आगे वाले कुछ समय टफ नजर आ रहा है, क्योंकि जो भू राजनीतिक परिस्थितियां बन रही हैं, जियो पोलिटिकल जिसको कहते हैं, और भू आर्थिक परिस्थितियां जो बन रही है जिसको जियो इकोनॉमिक कहते हैं, वो परिस्थितियां बहुत अनुकूल मुझे यहां से नहीं नजर आ रही हैं। रशिया नेटो में टेंशन है, ईरान इसराइल कभी खत्म ही नहीं होने में आ रहा है, 6 महीने से ऊपर हो गए, 4.5 साल रशिया यूक्रेन को हो गए। तो मुझे लग रहा है विनय यहां पर रिटेल निवेशकों को जो बहुत अच्छे वैल्यूएटेड शेयर्स हैं, जहां एक्स्ट्रॉर्डनरी वैल्यूएशन हैं, उसमें तो आप उसको लेके रख सकते हैं। पर ज्यादातर कभी कभी क्या होता है, मैं हालांकि ये कहने में थोड़ा संकोच कर रहा हूं, कभी कभी ना इन्वेस्ट करना भी विनय एक स्ट्रैटेजी होती है। निवेश करना तो स्ट्रैटेजी होती है, पर कभी कभी दूर बैठ के और तमाशा देखना भी एक स्ट्रैटेजी होती है, कि आप दूर बैठ के ऑब्जर्व करिए। तमाशा शब्द मैं एक हल्के अंदाज में, मतलब आप उसको ऑब्जर्व करिए। थोड़ा सा मार्केट का फैब्रिक जब सुधरेगा विनय, तब आप उसमें एंटर करिएगा, क्योंकि अभी हमें मार्केट का यहां से बॉटम नहीं मालूम है। और ये जो मैंने बात करी ये सभी श्रोताओं के लिए है। अब कोई कहेगा कि कोहली साहब तो पहले कहते थे कि भाई आप लंबे वक्त के लिए बने रहिए, 5 साल 10 साल बने रहिए, पर अब परिस्थितियां जैसे साहब

0: बदलती हैं, आपको उस हिसाब से स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ती है। मैं तो निवेश के लिए बात कहता हूं कि आपको हर 3 महीने में अब रिव्यू करने का वक्त आ गया है। तो इसलिए विनय, मैं उम्मीद करता हूं आपको संदेश मिल गया होगा और आप उसके अनुसार अपना निर्णय ले सकते हैं। हालांकि निवेश की सलाह आपको अपने फाइनेंशियल और इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से लेनी चाहिए और जो शुरू में डिस्क्लेमर और आखिर में डिस्क्लेमर पढ़ा जाता है उस पर भी ध्यान रखना चाहिए।
1: बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं, रुख करते हैं एशिया और यूरोप के बाजार की तरफ। श्रोताओं, एशिया के शेयर बाजारों में आज दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 4.5% से अधिक बढ़ा, जबकि जापान के निकेई सूचकांक में 2% से अधिक वृद्धि हुई।
2: शरद जी, हाउ डू वी सी दिस एशियन मार्केट्स ऑलमोस्ट काइंड ऑफ बीइंग इंसुलेटेड टुडे व्हेन कंपेयर्ड टू द यूरोपियन मार्केट? कॉस्पी 4.6, जापान निकेई 2.1% अप।
0: Well, we were very keenly observing Kospi since morning, and we found Hynix and Samsung, they were doing great. So I think there was excitement which was technology driven, and in the Nikkei we observed SoftBank taking the lead. So I think there were 2-3 companies. It was AI driven, it was tech driven, it was chip demand, semiconductor demand, which drove these markets contrary to the global sentiment. Also, we should not forget, I think the American markets are closed today because of the Labor Day,
2: right.
0: So they had their day where they could think independently without taking cues. I was joking at my office, you know, with our stock market team, that today, you know, the cat is away and the mouse will play. You know, no cues from America, so you just do whatever you want to for a change. Otherwise, the markets normally follow. And I say it sometimes in joke that it feels like the Karwa Chauth is happening, so its chand comes out, so it is drinking water. It feels like our market is coming out in the morning, when the American market opens, so we drink water. This kind of atmosphere is showing me. So today, there was no difficulty.
1: आपने उपमा दिया है। और गाजियाबाद से हमारे साथ इसी के साथ मनीष जुड़ रहे हैं। मनीष जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
3: नमस्कार मार्केट मंत्रा टीम, और कोहली जी को भी बहुत बहुत नमस्कार।
0: नमस्कार मनीष।
3: सर, अभी आपको सुन रहा था, आपने एक बड़ी अच्छी सी बात बताई, बता रहे थे कि कभी कभी ना नहीं इन्वेस्ट करना, बेचना भी एक स्ट्रेटेजी होती है। आई थिंक ये रिटेल के लिए आपने रिटेल इन्वेस्टर को माइंड में रख के बोला होगा, लेकिन उनके लिए जो एक SIP के थ्रू म्यूचुअल फंड पे रेगुलर कर रहे हैं पिछले कुछ सालों से, उनके लिए भी ये स्ट्रेटेजी क्या अप्लीकेबल होगी? दे शुड स्टॉप SIPs और वॉच, और दे शुड कंटिन्यू एज दे आर डूइंग? मतलब बेसिकली अ गुड अमाउंट ऑफ आर सेविंग्स आर गोइंग इन एज ए SIP, तो अभी का जो एज ए मतलब एक मिडिल क्लास फैमिली की तरफ से तो जा रहा है, बिकॉज जिस तरह से आप देख रहे हैं कि जो FIAs जिस तरह से वो पैसे निकाल रहे हैं आ रहे हैं, बट जो लोकल जो है उनकी तो SIP ठीक ठाक आ रही है। तो एज ए मिडिल क्लास मैं समझना चाहूँ, क्या स्ट्रेटजी उनके लिए भी है या दे शुड?
0: जी जी जी, देखिए मनीष, अगर तो आपकी SIP जो आपने म्यूचुअल फंड में किया हुआ है, अगर वो NAV अच्छा मुनाफा आपको मिल रहा है, तो फिर मैंने जो अभी पहले बोला था, वो आप उसको प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, और कुछ समय के लिए अगर आप रोक भी देंगे तो कोई मुझे इतना इसमें खराबी नहीं दिखाई देती है। पर अगर आप ऑलरेडी कमिटेड है, NAV आपकी इस टाइम बहुत अच्छी नहीं है, तो फिर आप कंटिन्यू कर सकते हैं। पर प्रॉफिट हो रहा है, मेन बात जो मैं कहना चाहता था प्राची और निशित, कि प्रॉफिट हो रहा है तो इस समय थोड़ा सा बुक कर लीजिए। और अगर आपकी NAV, अब ये मनीष मुझे नहीं पता आप कौन से फंड में हैं, कितनी NAV है, तो ये थोड़ा सा आप इसमें स्पेसिफिक में जाना पड़ेगा। आपकी बात का बहुत सटीक उत्तर तो तब दिया जा सकता है, पर अब तक जो मैंने बोला है, आप सुन रहे थे, मैंने आपकी बातों से लगा, उसमें से आप अंदाज निकाल सकते हैं।
1: मथुरा से हमारे साथ कुंज बिहारी जुड़ रहे हैं। महोदय, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
4: धन्यवाद। मैं ये पूछना चाहूंगा कि ये अपना गोल्ड कौन सा समय ठीक महसूस करें, जैसे आपका उतार चढ़ाव चल रहा है, और दूसरा सवाल, शेयर मार्केट के अलावा और कोई अच्छी जगह है जहां हम सेफ अपना इन्वेस्ट करें? और तीसरी एक छोटी सी बात अपने कोहली सर से है, ये पूछना है हमसे कि अगर ईरान अमेरिका का युद्ध खत्म हो जाता है, यूक्रेन और रशिया का युद्ध खत्म हो जाता है, इसमें इन दोनों चारों पार्टियों को किसको क्या बेनिफिट मिलेगा इतना बर्बादी होने के बाद?
0: चलिए, गोल्ड का आपने कहा, गोल्ड का तो मुझे भविष्य उज्जवल नजर आता है, क्योंकि आपने 3 पूछे हैं तो मुझे छोटे छोटे जवाब देने पड़ेंगे। मुझे लगता है लॉन्ग टर्म में गोल्ड बहुत पॉजिटिव इंडिकेशंस दे रहा है, शॉर्ट टर्म में उतार चढ़ाव रहेंगे। शेयर मार्केट के अलावा आपने पूछा और कहां, तो ऐसे समय में जब निवेश करना हो तो आप जो फिक्स रिटर्न इन्वेस्टमेंट्स हैं, जो सॉवरेन इन्वेस्टमेंट्स हैं, पोस्ट ऑफिस है, RBI के ट्रेजरी बॉन्ड्स हैं, बैंक के फिक्स डिपॉजिट्स हैं, तब तक के लिए निवेशक एक तरह से रिसेस ले सकते हैं। रिसेस होती थी ना जब स्कूल में हम छुट्टी हो जाती थी, कुछ टाइम के लिए पढ़ाई बंद हो जाती थी, तो आप एक रिसेस के तौर पे इन पे ले सकते हैं, इंतजार कर सकते हैं कि कौन सा सेक्टर आगे बढ़ रहा है। दूसरा, इन्होंने पूछा जब युद्ध खत्म हो जाएगा, तो आपके मुंह में पहले तो घी शक्कर, अगर ये युद्ध खत्म हो जाता है, और फिर क्या आपस में ये गले मिल लेंगे? अब तो मैं यही कहूंगा कि अगर खत्म हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, पर कुंज बिहारी जी, मुझे यहां से कुछ बहुत ज्यादा अभी खत्म होने

0: के आसार नजर नहीं आ रहे। काश आपकी बात सत्य हो, आप पहले बहुत दिनों बाद मुझे कोई ऐसे व्यक्ति मिले जो कह रहे थे कि ये लोग आपस में गले मिल जाएंगे, पर अभी मुझे कोई ऐसा आसार तो नहीं नजर आ रहे। निश्चित तो प्राची मेरे ख्याल
1: उनके
0: मेरी बात
1: कहने
0: से
1: का
0: अगर
1: तात्पर्य ये था कि अगर इस तरीके की जो युद्ध चल रहे हैं वो अगर सेटल हो जाते हैं तो किसका क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, ये किस चीज, ये कौन से नाक की लड़ाई
0: क्या
1: है?
0: खोया क्या पाया बाद
1: बिल्कुल
0: में। देखिए
1: बिल्कुल
0: मुझे लगता है युद्ध में ना कोई जीतता है ना कोई हारता है, केवल मानवता हारती है। नुकसान जानमाल
1: बिल्कुल
0: का नुकसान होता है। तो एक लाइन में जवाब दूं तो यही है।
2: Right, and on to some other stories. Prime Minister Narendra Modi will inaugurate and address the Global FinTech Fest GFF 2026 in Mumbai tomorrow evening. The theme of GFF 2026, one of the world's largest and most influential annual fintech conferences, is Potential to Impact Agentic AI, Tokenization, Quantum, Trusted, Connected, Global Systems for Inclusive Finance. According to an official press release, GFF 2026 seeks to build on India's leadership in digital payments and financial inclusion and move from potential to impact. The discussions will focus on how AI, programmable finance, quantum technologies and other critical and emerging technologies can create trusted, inclusive and measurable outcomes for citizens, enterprises and economies globally. Since 2020, Global FinTech Fest has emerged as a leadership platform bringing together policymakers, regulators, central banks, financial institutions, fintechs, technology companies, investors, academia, and other global stakeholders to discuss and shape the future of finance. The seventh edition will run till 11th of September 2026 in Mumbai.
1: Delhi se Deepak hamare saath jud rahe hain. Deepak ji, sankshipt mein apna sawal poochiye please.
3: Namaskar ma'am.
1: Ji.
3: मेरा कुछ नहीं था, जैसे मार्केट डाउन होती है तो लिक्विड फंड के जो इंटरेस्ट है वो भी डाउन होता है या वो सेम चलता रहता है?
0: दीपक, लिक्विड फंड्स के जो इंटरेस्ट रेट्स होते हैं, जो उस पर रिटर्न होता है, वो वेरी करता रहता है। वो डिपेंड करता है कि डिमांड और सप्लाई पे, कि कितने लोग लिक्विड फंड्स में, जो श्रोता नहीं जानते उनके लिए जल्दी से मैं बता दूं, लिक्विड फंड्स होते हैं जो 2-3 दिन के लिए आप पैसा रखते हैं, उसमें आपको अमूमन मैंने देखा है करीब 6 से 7.5% डिपेंडिंग ऑन डिमांड सप्लाई इतना रिटर्न आता है। तो वो ऊपर नीचे होता रहता है दीपक उसमें, पर वो रिलेटिवली सेफ माने जाते हैं। और बहुत ही छोटे टर्म के लिए जब किसी को पैसा रखना हो तो बजाय इसके कि सेविंग्स में पड़ा है, तो बहुत लोग इसमें इसको खेल को करते हैं और बड़ा बड़ा कामयाब तरीके से करते हैं।
2: मूविंग ऑन टू क्रूड, द ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस क्लाइम्ड टू नियर 6-week हाई as renewed strikes over the weekend in the Strait of Hormuz heightened concerns over supply disruptions. Brent crude was trading 1.1% up at $97.37 per barrel in the intraday trade. The West Texas Intermediate crude was trading 0.8% up at $92.20 per barrel when reports last came in.
1: Bharatiya Sarafa Bazaar mein 24 carat sone ki keemat aaj lagbhag 1.5% phisal kar 1,52,703 rupaye prati 10 gram ho gayi. Wahin chandi ki keemat 1.5% se adhik badhkar 2,31,650 रुपए प्रति किलोग्राम दर्ज की गई। शरद जी, कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। तमाम श्रोताओं के तमाम सवालों के तमाम जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद, थैंक यू सो मच।
2: थैंक यू सो वेरी मच शरद जी। एंड बिफोर वी क्लोज, अ रिमाइंडर ऑफ द हेडलाइंस वंस अगेन। द बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडिसेस डिक्लाइन, सेंसेक्स स्लिप्स नियरली 400 पॉइंट्स, निफ्टी सेटल्स बिलो 23,800. The global crude oil prices rise and Prime Minister Narendra Modi to address the Global FinTech Fest 2026 in Mumbai tomorrow. And that's all we have in this edition of Market Mantra from the entire team here. It's goodbye.
4: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।

किशोर कुमार, मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में राजेश रोशन का संगीत, मजरू सुल्तानपुरी का लिखा हुआ ये गीत आप सुन रहे हैं फिल्म दूसरा आदमी से, और ये है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर गीत मेरे मनमीत, और आज आपके संग है अर्पना। अगला गीत जो आप सुनेंगे गीत मेरे मनमीत में, वो है फिल्म खून भरी मांग से। इसका भी संगीतकार राजेश रोशन है, गीत इंदिवर का लिखा है और आवाज होगी नितिन मुकेश, साधना सरगम की।

11:52 और 9 सेकंड हो चुके हैं। आप सुन रहे हैं गीत मेरे मन में। अगला गीत होगा लता मंगेशकर की आवाज में, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है और फिल्म का नाम है गीता मेरा नाम।

बजकर 55 मिनट और 50 सेकंड हो चुके हैं। अगला गीत होगा जगजीत सिंह की आवाज में फिल्म अर्थ से। इस गीत के बाद एफएम गोल्ड पर आप सुनेंगे समाचार। अर्पणा को दे इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा और मुस्कुराते रहिएगा। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। रक्षा खरीद परिषद ने सशस्त्र बलों के लिए 1,10,000 करोड़ रुपए से अधिक के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई परिषद की बैठक में दी गई। परिषद की बैठक में सेना के लिए रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और परमाणु टोही वाहन, हाई मोबिलिटी वाहन, स्वचालित माइन लेयर, एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर, ट्रॉल टैंक और सर्वत ब्रिज सिस्टम की

0: खरीद को मंजूरी दी गई। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि 98% खरीद भारतीय उद्योग से की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात यात्रा पर रहेंगे। श्री मोदी राज्य में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। अहमदाबाद में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि पूर्वी और पश्चिमी समर्पित माल ढुलाई गलियारे देश के परिवहन और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र की महत्वपूर्ण आधारभूत संरचना है।
1: डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ईस्ट और वेस्ट, ये दोनों देश के लिए बहुत बड़ी एक बैकबोन की तरह है ट्रांसपोर्टेशन में। वो प्रोजेक्ट अब कंप्लीट हुआ पूरी तरह से, उसको माननीय प्रधानमंत्री जी कल राष्ट्र के प्रति समर्पित करेंगे। ये परियोजना ऐसी है जिसमें कई वर्ष लगे, 2014 में प्रधानमंत्री ने उस काम को हाथ में लिया, हाथ में लेके जितनी भी उसमें प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व किया और अब कम्प्लीट हुआ।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने गोवा पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान किया है। इस अवसर पर गृह मंत्री ने गोवा पुलिस की सेवा, व्यावसायिकता, साहस और अनुशासन की सराहना की।
2: 8 दशकों की गौरवशाली गोवा पुलिस की सेवा राष्ट्रपति जी के दिए हुए निशान के साथ देश भर की पुलिस की कतार में खड़ी है। ये गौरव जिन जिन राज्यों की पुलिस को मिला वो पुलिस के गौरवशाली इतिहास, साहस, अनुशासन और समर्पण के कारण ही राष्ट्रपति महोदय ने गोवा को प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित करने का काम किया है।
0: इससे पहले गृहमंत्री ने गोवा के पणजी में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता की। श्री शाह ने कहा कि पश्चिमी क्षेत्र के राज्यों के बीच अब कोई विवाद नहीं है। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने कहा है कि सरकार ने तेल विपणन कंपनियों को घरेलू रसोई गैस एलपीजी रिफिल बुकिंग के नियमों में बड़ी ढील देने का निर्देश दिया है। अब देश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में सभी घरेलू एलपीजी उपभोक्ता 25 दिनों के अंतराल पर सिलेंडर बुक करा सकेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के महानिदेशक डॉ. साइमन हेक के साथ विस्तृत चर्चा की। बैठक में आलू के बेहतर बीज और रोपण सामग्री उपलब्ध कराने, किसानों की समस्याओं के समाधान और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद तथा केंद्र के बीच सहयोग मजबूत करने पर चर्चा हुई। श्री चौहान ने कहा कि आगरा स्थित केंद्र को दुनिया की उन्नत आलू प्रजातियों को भारत लाने और देश की अलग अलग जलवायु के अनुकूल आलू की नई किस्में विकसित करने में मदद करनी चाहिए। इससे आलू किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। निर्वाचन आयोग ने असम की नागांव लोकसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा की है। इसके साथ ही तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की 2-2 विधानसभा सीटों और पुदुचेरी की 1 सीट पर उपचुनाव की घोषणा की गई है। आयोग ने बताया कि तमिलनाडु की मदुरंतकम और धर्मपुर सीट, पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम सीटें तथा पुदुचेरी की थट्टन चावड़ी विधानसभा सीट पर मतदान होगा। मतदान 6 अक्टूबर को और मतगणना 9 अक्टूबर को होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कल नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के उप प्रबंध निदेशक नाइजेल क्लॉट से भेंट की। बैठक में भारत और कोष के बीच संबंधों पर चर्चा हुई। इस दौरान कोष ने दक्षिण एशिया क्षेत्रीय प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता केंद्र को मजबूत करने में भारत की भूमिका की सराहना की। शीतल देवी ने विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला में महिला कंपाउंड में व्यक्तिगत वर्ग के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। अहमदाबाद में कल सेमीफाइनल में शीतल देवी ने सरिता को हराया। कांस्य पदक के मुकाबले में सरिता चीन की वांग हुईटिंग से खेलेंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आरएस रघु। The Defence Acquisition Council DAC has cleared capital acquisition proposals worth over 1,10,000 crore rupees for the defence forces. Our correspondent reports that the approval was taken during a meeting of the council held yesterday under the chairmanship of Defence Minister Rajnath Singh.
4: The council granted approval for the procurement of chemical, biological, radiological and nuclear CBRN recce vehicles, high mobility vehicles, HMV, self-propelled mechanical mine layer.

वक्त हुआ है 12:10 और ठीक 58 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर निशिगंधा, मैं हूं राखी आपके साथ।

सिमटी हुई ये घड़ियां फिर से ना बिखर जाए, जो पल आज हमारे पास है कहीं कल यादों में ना बदल जाए, तो क्यों ना इन लम्हों को जी भरकर जी लिया जाए। थोड़ी सी मुस्कान, थोड़ी सी मोहब्बत और ढेर सारे सुहाने गीतों के साथ। चंबल की कसम फिल्म का गीत आपने सुना रफी और लता मंगेशकर की आवाज में, साहिर ने इसे लिखा और संगीत दिया खयाम ने।

दिन भर की भागदौड़ के बाद जब मन थोड़ी शांति तलाशता है तो कुछ गीत जैसे धीरे से दिल का हाथ थाम लेते हैं। उनकी धुन में एक ठहराव होता है, बोलों में अपनापन और आवाज में ऐसा जादू कि कुछ पल के लिए सारी उलझने पीछे छूट जाती हैं। शंकर हुसैन फिल्म का गाना आपने सुना, लता मंगेशकर की आवाज में। कैफ भोपाली ने इसे लिखा और संगीत दिया खयाम ने।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

वक्त हुआ है 12:30 और ठीक 15 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। इस वक्त आप सुन रहे हैं निशिगंधा। मैं हूं राखी, आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

कुछ मुलाकातें ऐसी होती हैं जिनमें वक्त जैसे ठहर सा जाता है, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनकी गर्माहट बरसों बाद भी कम नहीं होती। कभी किसी गीत के बहाने, कभी किसी पुरानी याद के सहारे वही एहसास फिर से दिल के करीब आ जाता है। खानदान फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में, नक्श ने इसे लिखा और संगीत दिया खयाम ने।

मोहब्बत में रूठना भी जरूरी है और मनाना भी। कभी छोटी सी शिकायत, कभी मीठी सी मनोहार, यही तो वो नाजुक से पल है जो रिश्ते को सिर्फ रिश्ता नहीं रहने देते, उसे एक खूबसूरत एहसास बना देते हैं। टूटे खिलौने फिल्म का गाना आपने सुना, इस गीत को गाया यशुदास ने और इस गीत को लिखा कैफी आजमी ने और संगीत दिया बप्पी लाहिड़ी ने।

मधुबन की तरह हमारी जिंदगी भी तभी सार्थक होती है जब उसकी खुशबू सिर्फ हम तक सीमित ना रहे बल्कि दूसरों के जीवन में भी खुशियां और उम्मीदें भर दें, जो खुद खिलकर दूसरों को महकाना सिखाए, जो अपने हिस्से की रोशनी बांटकर किसी और की राह आसान कर दे, शायद वही जीवन की सबसे खूबसूरत पहचान है। साजन बिना सुहागन फिल्म का गाना आपने सुना, अनुराधा पौडवाल और यशुदास की आवाज में। अमित खन्ना ने इस गीत को लिखा और

चंबल की कसम फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। नीरज ने इसे लिखा और संगीत दिया जयदेव ने।

दर्द फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। इस गीत से पहले हमने आपको जो गीत सुनवाया था वो चंबल की कसम से नहीं बल्कि रेशमा और शेरा से था, जिसे गाया

वक्त हुआ है 12:56 और ठीक 57 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 1 बजे सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी समाचार। समाचारों के बाद 1:10 पर गीत सुहाने मेरे साथ। फिलहाल कुछ देर के लिए राखी को इजाजत दीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात जाएंगे। वे राज्य में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। अहमदाबाद में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पूर्वी और पश्चिमी समर्पित माल ढुलाई गलियारे देश के परिवहन और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र की महत्वपूर्ण आधारभूत संरचना है। उन्होंने कहा कि यह महत्वाकांक्षी परियोजना पूरी हो चुकी है और प्रधानमंत्री आज इसे राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री आज शाम मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी सम्मेलन को संबोधित भी करेंगे। इस सम्मेलन का उद्देश्य डिजिटल भुगतान और वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में भारत के नेतृत्व को और मजबूत करना तथा संभावनाओं को वास्तविकता में बदलना है। गृहमंत्री अमित शाह ने गोवा पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान किया। इस अवसर पर गृहमंत्री ने गोवा पुलिस की सेवा, व्यावसायिकता, साहस और अनुशासन की सराहना की।
1: 8 दशकों की गौरवशाली गोवा पुलिस की सेवा राष्ट्रपति जी के दिए हुए निशान के साथ देश भर की पुलिस की कतार में खड़ी है। ये गौरव जिन जिन राज्यों की पुलिस को मिला वो

0: पुलिस के गौरवशाली इतिहास, साहस, अनुशासन और समर्पण के कारण ही राष्ट्रपति महोदय ने गोवा को प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित करने का काम किया है।
1: इससे पहले गृह मंत्री ने गोवा के पणजी में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता की। श्री शाह ने कहा कि पश्चिमी क्षेत्र के राज्यों के बीच अब कोई विवाद नहीं है। रक्षा खरीद परिषद ने सशस्त्र बलों के लिए 1,10,000 करोड़ रुपए से अधिक के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई परिषद की बैठक में दी गई। परिषद की बैठक में सेना के लिए रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और परमाणु टोही वाहन, हाई मोबिलिटी वाहन, स्वचालित माइन लेयर, एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर, ट्रॉल टैंक और सर्वत ब्रिज सिस्टम की खरीद को मंजूरी दी गई। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि 98% खरीद भारतीय उद्योग से की जाएगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के महानिदेशक डॉ. साइमन हेक के साथ विस्तृत चर्चा की। बैठक में आलू के बेहतर बीज और रोपण सामग्री उपलब्ध कराने, किसानों की समस्याओं के समाधान और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद तथा केंद्र के बीच सहयोग मजबूत करने पर चर्चा हुई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने भारतीय मजदूर संघ के नेतृत्व में विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कर्मचारियों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए चिकित्सा सुविधा, अनुग्रह राशि और प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन योजना सहित कई मुद्दे उठाए। वित्त मंत्रालय ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 की प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन योजना फिलहाल स्थगित रहेगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि सत्य निकेतन इमारत के मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके साथ ही लापरवाही बरतने के आरोप में नगर निगम के 5 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कड़ा रुख अपनाते हुए पूरी दिल्ली में 5वीं मंजिल वाली इमारतों को तुरंत सील करने के आदेश दिए हैं। जम्मू कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का कल औपचारिक उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, वरिष्ठ नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता डॉ. फारूक अब्दुल्ला और प्रसिद्ध फिल्म निर्माता रमेश सिप्पी तथा विधु विनोद चोपड़ा मौजूद रहे। महोत्सव में 40 से अधिक देशों की 130 से ज्यादा फिल्में प्रदर्शित की जाएंगी। इसका आयोजन श्रीनगर, गुलमर्ग और जम्मू में एक साथ हो रहा है। शीतल देवी ने विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला में महिला कंपाउंड के व्यक्तिगत वर्ग के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। अहमदाबाद में कल सेमीफाइनल में शीतल देवी ने सरिता को हराया। किताबी मुकाबले में शीतल का सामना बुधवार को कजाकिस्तान की एजादा सेदान से होगा। कांस्य पदक मुकाबले में सरिता चीन की वांग हुई थिंग से खेलेंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by R.S. Raghu. The Defence Acquisition Council, DAC, has cleared capital acquisition proposals worth 1,10,000 crore rupees for the Defence Forces. Our correspondent reports that the approval was taken during a meeting of the Council held yesterday under the chairmanship of Defence Minister Rajnath Singh.
3: The Council granted approval for the procurement of chemical, biological, radiological and nuclear CBRN Recce vehicles, high mobility vehicles HMV, self-propelled mechanical mine layers MML, advanced light helicopters ALH, trawl tanks and Sarvatra bridge system for the Indian Army. For the Indian Navy, acceptance of necessity was accorded for the procurement of Arudhra radars, design and development and subsequent procurement of marine gas turbines MGT. Arudhra radars will replace the existing air route surveillance radars at various naval air stations, and MGT, a warship propulsion system, will reduce dependency on foreign vendors. Meanwhile, for the Indian Air Force, approval was granted to various proposals to enhance the warfighting capability. Approval was also accorded for procuring ground-based multipurpose jammer and installing Defence Forces Secure Access Card system. The defense ministry said 98% of total procurement will be made from the Indian industry.

वक्त हुआ है 1:10 और ठीक 58 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर गीत सुहाने, मैं हूं राखी आपके साथ।

कुछ एहसास ऐसे होते हैं जिन्हें चाहकर भी दिल से जुदा नहीं किया जा सकता। कितना भी खुद को बहलाएं, दिल है कि मानता ही नहीं। शायद किसी की याद का असर है कि कुछ ऐसा होता है कि आंखें बंद हों तो चेहरा सामने होता है और आंखें खोलें तो इंतजार। दिल दिया दर्द लिया फिल्म का गाना आपने सुना रफी की आवाज में। शकील बदायूनी ने इसे लिखा और संगीत दिया नौशाद ने।

याद भी बड़ी अजीब चीज है, कभी हल्की सी दस्तक देकर चली जाती है और कभी दिल के दरवाजे पर आकर ठहर जाती है, और फिर किसी की याद आए तो बस यूं ही नहीं आती, बल्कि हर पल हर सांस के साथ आती है। पारसमणि फिल्म का गाना आपने सुना, लता और रफी की आवाज में। असद भोपाली ने इसे लिखा और संगीत दिया, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

कुछ गीत सिर्फ गीत नहीं होते, वो किसी का इंतजार होते हैं, किसी की याद होते हैं और कभी कभी तो किसी को वापस बुलाने की आवाज भी होते हैं। रानी रूपमती ये फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में, भरत व्यास ने इसे लिखा और संगीत दिया एस एन त्रिपाठी ने।

वक्त हुआ है 1:28 और ठीक 47 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। इस वक्त आप सुन रहे हैं गीत सुहाने। मैं हूं राखी, आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

जब दिल किसी अपने के लौट आने की राह देखता है तो खामोशियों में भी एक पुकार सुनाई देती है, एक ऐसी पुकार जिसमें शिकायत कम और इंतजार ज्यादा होता है। नागिन फिल्म का गाना आपने सुना, लता मंगेशकर की आवाज में। राजेंद्र कृष्ण ने इसे लिखा और संगीत दिया हेमंत कुमार ने।

कभी किसी के चले जाने का दर्द इतना गहरा होता है कि जिंदगी की सारी रौनकें ही गायब हो जाती हैं, और फिर दिल बस यही कहता है, छोड़ गए बालम मुझे, हाय अकेला छोड़ गए। ये गीत आपने सुना फिल्म बरसात से, लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में। हसरत जयपुरी ने इसे लिखा और संगीत दिया शंकर जयकिशन ने।

कुछ यादें ऐसी होती हैं जिन्हें वक्त अपने साथ आगे तो ले आता है, लेकिन दिल से कभी दूर नहीं कर पाता। बीते हुए दिन, पुराने चेहरे, वो मासूम सी हंसी और वो बेफिक्र पल, सब कुछ यादों की किताब में कहीं ना कहीं महफूज रहता है। दिल एक मंदिर फिल्म का गाना आपने सुना रफी की आवाज में। हसरत जयपुरी ने इसे लिखा और संगीत दिया शंकर जयकिशन ने।

कभी कभी दिल की दुनिया भी इस तरह से उजड़ जाती है कि सारी बगिया ही उजड़ी हुई प्रतीत होती है। जहां कभी मोहब्बत के फूल खिला करते थे, वहां बस यादों की खामोशी रह जाती है। ऐसे में मन करता है कि कोई पंछी बनकर उन बहारों के देश उड़ जाए, जहां शायद बीते दिनों की कोई खुशबू अब भी बाकी हो। ये गीत आपने सुना फिल्म माया से, इसे गाया लता मंगेशकर ने। मजरूह सुल्तानपुरी ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया सलिल चौधरी ने।

रात जितनी गहरी होती है, खामोशी उतनी ही गहरी महसूस होती है, और ऐसे में दिल को तलाश होती है किसी छोटी सी रोशनी की, एक उम्मीद की, एक अपनेपन की। कभी कभी एक छोटा सा चिराग भी अंधेरे से लड़ने के लिए काफी होता है। बस उसे तलाश होती है किसी अपने की। चिराग फिल्म का गाना आपने सुना रफी की आवाज में। मजरूह सुल्तानपुरी ने इसे लिखा और संगीत दिया मदन मोहन ने।

अदालत फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। राजेंद्र कृष्ण ने इसे लिखा और संगीत दिया मदन मोहन ने। वक्त हुआ है 1:55 और ठीक 10 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 2 बजे सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार। समाचारों के बाद 2:10 पर रात सुरमई मेरे साथ। फिलहाल कुछ देर के लिए राखी को इजाजत दीजिए।

कागज के फूल फिल्म का गाना आपने सुना गीता दत्त की आवाज में। कैफी आजमी ने इसे लिखा और संगीत दिया एसडी बर्मन ने।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात जाएंगे। वे राज्य में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। अहमदाबाद में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पूर्वी और पश्चिमी समर्पित माल ढुलाई गलियारे देश के परिवहन और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र की महत्वपूर्ण आधारभूत संरचना है। उन्होंने कहा कि यह महत्वाकांक्षी परियोजना अब पूरी हो चुकी है और प्रधानमंत्री आज इसे राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री आज शाम मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी सम्मेलन को संबोधित भी करेंगे। इस सम्मेलन का उद्देश्य डिजिटल भुगतान और वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में भारत के नेतृत्व को और मजबूत करना तथा संभावनाओं को वास्तविकता में बदलना है। गृहमंत्री अमित शाह ने गोवा पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान किया। इस अवसर पर गृहमंत्री ने गोवा पुलिस की सेवा, व्यावसायिकता, साहस और अनुशासन की सराहना की।
1: 8 दशकों की गौरवशाली गोवा पुलिस की सेवा राष्ट्रपति जी के दिए हुए निशान के साथ देश भर की पुलिस की कतार में खड़ी है। ये गौरव जिन जिन राज्यों की पुलिस को मिला वो पुलिस के गौरवशाली इतिहास, साहस, अनुशासन और समर्पण के कारण ही राष्ट्रपति महोदय ने गोवा को प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित करने का काम किया है।
0: इससे पहले गृहमंत्री ने गोवा के पणजी में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता की। श्री शाह ने कहा कि पश्चिमी क्षेत्र के राज्यों के बीच अब कोई विवाद नहीं है। रक्षा खरीद परिषद ने सशस्त्र बलों के लिए

0: लाख 10,000 करोड़ रुपए से अधिक के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई परिषद की बैठक में दी गई। परिषद की बैठक में सेना के लिए रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और परमाणु टोही वाहन, हाई मोबिलिटी वाहन, स्वचालित माइन लेयर, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, ट्रॉल टैंक और सर्वत सिस्टम की खरीद को मंजूरी दी गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने भारतीय मजदूर संघ के नेतृत्व में विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कर्मचारियों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए चिकित्सा सुविधा, अनुग्रह राशि और प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन योजना सहित कई मुद्दे उठाए। वित्त मंत्रालय ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 की प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन योजना फिलहाल स्थगित रहेगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने दुबई में इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन मध्य प्रदेश कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि राज्य में पारदर्शी नीतियां, सुशासन और निवेश के अनुकूल माहौल के साथ विकास की व्यापक संभावनाएं हैं। उन्होंने मध्य प्रदेश की मजबूत सड़क और रेल संपर्क तथा आधुनिक लॉजिस्टिक व्यवस्था का उल्लेख करते हुए कृषि उद्योग, सेवा, खाद्य प्रसंस्करण और कपड़ा क्षेत्र में निवेश की संभावनाओं पर जोर दिया। लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री जेवियर बेटेल ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा परिषद में सुधार होना चाहिए ताकि वह मौजूदा वैश्विक व्यवस्था को बेहतर ढंग से दर्शा सकें। श्री बेटेल ने सुरक्षा परिषद की वीटो व्यवस्था को द्वितीय विश्व युद्ध के समय की व्यवस्था बताते हुए इसमें बदलाव की आवश्यकता पर जोर दिया। ईरान ने अमरीका को चेतावनी दी है कि अगर उसके ठिकानों पर फिर हमला किया गया तो वह जवाबी कार्रवाई करेगा। ईरान ने कहा है कि खाड़ी क्षेत्र में अमरीकी तेल और गैस प्रतिष्ठानों समेत ऊर्जा ढांचे को निशाना बनाया जा सकता है। शीतल देवी ने विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला में महिला कंपाउंड के व्यक्तिगत वर्ग के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। अहमदाबाद में कल सेमीफाइनल में शीतल देवी ने सरिता को हराया। खिताबी मुकाबले में शीतल का सामना बुधवार को कजाकिस्तान की इजादा सेदान से होगा। कांस्य पदक के मुकाबले में सरिता चीन की वांग हुईटिंग से खेलेंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by R.S. Raghu. The Defense Acquisition Council, DAC, has cleared capital acquisition proposals worth over 1,10,000 crore rupees for the Defense Forces. Our correspondent reports that the approval was taken during a meeting of the council held yesterday under the chairmanship of Defense Minister Rajnath Singh.
2: The Council granted approval for the procurement of chemical, biological, radiological and nuclear CBRN Recce vehicles, high mobility vehicles HMV, self-propelled mechanical mine layers MML, advanced light helicopters ALH, trawl tanks and Sarvatra bridge system for the Indian Army. For the Indian Navy, acceptance of necessity was accorded for the procurement of Arudhra radars, design and development and subsequent procurement of marine gas turbines MGT. Arudhra radars will replace the existing air route surveillance radars at various naval air stations, and MGT, a warship propulsion system, will reduce dependency on foreign vendors. Meanwhile, for the Indian Air Force, approval was granted to various proposals to enhance the warfighting capability. Approval was also accorded for procuring ground-based multipurpose jammer and installing Defence Forces Secure Access Card system. The Defence Ministry said 98% of total procurement will be made from the Indian industry. The CBRN Recce vehicles will be capable of detecting, identifying, monitoring and marking of areas contaminated with CBRN agents. The HMVs will enhance operational capabilities, logistic supports and mobility in challenging terrains. With Rishu, Saklan Akhtar for Akashvani News, Delhi.
1: Prime Minister Narendra Modi will visit Gujarat and Maharashtra today. In Vadodara, the Prime Minister will lay the foundation stones, inaugurate and dedicate to the nation various development projects worth more than 35,000 crore.

वक्त हुआ है 2:11 और ठीक 3 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर रात सुरमई, मैं हूं राखी आपके साथ। ये रात सुरमई है, हवा में जैसे कोई मीठी सी खुशबू खुली है, चांदनी की नरम रोशनी है और खामोशी भी आज कुछ कह रही है।

हम किसी से कम नहीं फिल्म से आपने गाना सुना रफी की आवाज में। मजरूह सुल्तानपुरी ने इसे लिखा और संगीत दिया आरडी बर्मन ने। जी हाँ, ऐसी रातों में दिल न जाने क्यों बीते लम्हों की गलियों में लौट जाता है और फिर कोई पुराना गीत धीरे से दिल के दरवाजे पर दस्तक देता है।

रात सुरमई है, हवाओं में एक मीठी सी खामोशी है, और इस खामोशी के बीच अगर किसी की याद सबसे ज्यादा आती है तो शायद वो वही है जो दिल के बेहद करीब है। लव स्टोरी फिल्म का गाना आपने सुना अमित कुमार की आवाज में। आनंद बख्शी ने इसे लिखा और संगीत दिया आर डी बर्मन ने।

कभी कभी दिल में किसी की तस्वीर इतनी गहरी उतर जाती है कि फिर हर खूबसूरत चीज में उसी का अक्स नजर आने लगता है। इस सुरमई रात में चांद को निहारते हुए दिल ने भी शायद यही सवाल किया होगा, क्या इस दुनिया में कोई इतना हसीन है? मेरे यार सा हसीन कोई है भी? और चांद ने भी मुस्कुराकर कह दिया होगा, नहीं नहीं, मेरे पास भी उसकी खूबसूरती का कोई जवाब नहीं। अब्दुल्ला फिल्म का गाना आपने सुना, रफी की आवाज में। आनंद बख्शी ने इसे लिखा और संगीत दिया आर डी बर्मन ने।

जाबाज फिल्म का गाना आपने सुना, सपना मुखर्जी और महेश गढ़वी की आवाज में। इंदिवर ने इसे लिखा और संगीत दिया कल्याण जी आनंद जी ने।

वक्त हुआ है 2:33 और ठीक 29 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर रात सुरमई, मैं हूं राखी, आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

कितनी खूबसूरत तमन्ना है कि कोई हमारे गीत को अपनी आवाज दे दे और हमारी मोहब्बत को अपनी मौजूदगी, फिर गीत भी अमर हो जाए और प्रीत भी। आपने प्रेम गीत फिल्म का गीत सुना जगजीत सिंह की आवाज में। इसे इंदीवर ने लिखा और संगीत दिया जगजीत सिंह ने।

कभी कभी किसी का साथ सिर्फ साथ नहीं होता, वो हमारी उम्मीद, हमारी मुस्कान और हमारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा बन जाता है। अगर तुम ना होते, फिल्म से ये गाना आपने सुना, किशोर कुमार की आवाज में। गुलशन बाबरा ने इसे लिखा और संगीत दिया आर डी बर्मन ने।

जिंदगी भी अजीब है, कभी धूप कभी छांव, कभी खुशियों की दस्तक तो कभी गम की आहट। लेकिन जिसने इसके हर रंग को खुले दिल से अपनाया, शायद वही जिंदगी को सच में जी पाया। सदमा फिल्म का गाना आपने सुना सुरेश वाडकर की आवाज में। गुलजार ने इसे लिखा और संगीत दिया इलैया राजा ने।

जूली फिल्म का गाना आपने सुना किशोर कुमार की आवाज में, आनंद बख्शी ने इसे लिखा और संगीत दिया राजेश रोशन ने। वक्त हुआ है 2:55 और ठीक 32 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर अब से बस कुछ ही देर में ठीक 3 बजे आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार। समाचारों के बाद 3:10 पर हमराही नीता अग्रवाल के साथ। तो इसी के साथ अब राखी को इजाजत दीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात जाएंगे। वे राज्य में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। अहमदाबाद में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पूर्वी और पश्चिमी समर्पित माल ढुलाई गलियारे देश के परिवहन और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र की महत्वपूर्ण आधारभूत संरचना है। उन्होंने कहा कि यह महत्वाकांक्षी परियोजना पूरी हो चुकी है और प्रधानमंत्री आज इसे राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री आज शाम मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी सम्मेलन को संबोधित भी करेंगे। इस सम्मेलन का उद्देश्य डिजिटल भुगतान और वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में भारत के नेतृत्व को और मजबूत करना तथा संभावनाओं को वास्तविकता में बदलना है। गृहमंत्री अमित शाह ने गोवा पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान किया। इस अवसर पर गृहमंत्री ने गोवा पुलिस की सेवा, व्यावसायिकता, साहस और अनुशासन की सराहना की।
1: 8 दशकों की गौरवशाली गोवा पुलिस की सेवा राष्ट्रपति जी के दिए हुए निशान के साथ देश भर की पुलिस की कतार में खड़ी है। ये गौरव जिन जिन राज्यों की पुलिस को मिला वो पुलिस के गौरवशाली इतिहास, साहस, अनुशासन और समर्पण के कारण ही राष्ट्रपति महोदय ने गोवा को प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित करने का काम किया है।
0: इससे पहले गृहमंत्री ने गोवा के पणजी में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता की। श्री शाह ने कहा कि पश्चिमी क्षेत्र के राज्यों के बीच अब कोई विवाद नहीं है। रक्षा खरीद परिषद ने सशस्त्र बलों के लिए 1,10,000 करोड़ रुपए से अधिक के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई परिषद की बैठक में दी गई। परिषद की बैठक में सेना के लिए रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और परमाणु टोही वाहन, हाई मोबिलिटी वाहन, स्वचालित माइन लेयर, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, टॉल टैंक और सर्वत ब्रिज सिस्टम की खरीद को मंजूरी दी गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने भारतीय मजदूर संघ के नेतृत्व में विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कर्मचारियों के

0: प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। प्रतिनिधि मंडल ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए चिकित्सा सुविधा, अनुग्रह राशि और प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन योजना सहित कई मुद्दे उठाए। वित्त मंत्रालय ने कहा कि सरकार बैंक कर्मचारियों, ग्राहकों और बैंकिंग क्षेत्र के हित में संवाद और आपसी सहमति के जरिए मुद्दों का समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि सत्यनिकेतन इमारत के मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके साथ ही लापरवाही बरतने के आरोप में नगर निगम के 5 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कड़ा रुख अपनाते हुए पूरी दिल्ली में 5वीं मंजिल वाली इमारतों को तुरंत सील करने के आदेश दिए हैं। लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री जेवियर बेटेल ने संयुक्त राष्ट्र रक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। श्री बेटेल ने सुरक्षा परिषद की वीटो व्यवस्था को द्वितीय विश्व युद्ध के समय की व्यवस्था बताते हुए इसमें बदलाव की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत और ब्राजील जैसे बड़े देशों को सुरक्षा परिषद में स्थायी भूमिका मिलनी चाहिए। श्री बेटेल 7 से 9 सितम्बर तक भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर हैं। जम्मू कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का कल औपचारिक उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, वरिष्ठ नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता डॉ. फारूक अब्दुल्ला और प्रसिद्ध फिल्म निर्माता रमेश सिप्पी तथा विनोद चोपड़ा मौजूद रहे। महोत्सव में 40 से अधिक देशों की 130 से ज्यादा फिल्में प्रदर्शित की जाएंगी। इसका आयोजन श्रीनगर, गुलमर्ग और जम्मू में एक साथ हो रहा है। शीतल देवी ने विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला में महिला कंपाउंड के व्यक्तिगत वर्ग की फाइनल में प्रवेश कर लिया है। अहमदाबाद में कल सेमीफाइनल में शीतल देवी ने सरिता को हराया। खिताबी मुकाबले में शीतल का सामना बुधवार को कजाकिस्तान की एजादा सेदान से होगा। कांस्य पदक के मुकाबले में सरिता चीन की वांग हुईटिंग से खेलेंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आरएस राघु। The Defence Acquisition Council DAC has cleared capital acquisition proposals worth over 1,10,000 crore rupees for the defence forces. Our correspondent reports that the approval was taken during a meeting of the council held yesterday under the chairmanship of Defence Minister Rajnath Singh.
2: The council granted approval for the procurement of chemical, biological, radiological and nuclear CBRN recce vehicles, high mobility vehicles HMV, self-propelled mechanical mine layers MML, advanced light helicopters ALH, trawl tanks and Sarvatra breath system for the Indian Army. For the Indian Navy, acceptance of necessity was accorded for the procurement of Arudhra radars, design and development and subsequent procurement of marine gas turbines MGT. Arudhra radars will replace the existing air route surveillance radars at various naval air stations, and MGT, a warship propulsion system, will reduce dependency on foreign vendors. Meanwhile, for the Indian Air Force, approval was granted to various proposals to enhance the warfighting capability. Approval was also accorded for procuring ground-based multipurpose jammer and installing Defence Forces Secure Access Card system. The Defence Ministry said 98% of total procurement will be made from the Indian industry. The CBRN recce vehicles will be capable of detecting, identifying, monitoring and marking of areas contaminated with CBRN agents. The HMVs will enhance operational capabilities, logistic supports and mobility in challenging terrains. With Rishu Saklan Akhtar for Akashwani News, Delhi.
1: Prime Minister Narendra Modi will visit Gujarat and Maharashtra today. In Vadodara, the Prime Minister will lay the foundation stones and inaugurate and dedicate to the nation various development projects worth more than 35,000 crore rupees. He will also dedicate to the nation 3 important sections of the Western Dedicated Freight Corridor WDFC, covering 326 kilometers. Briefing media personnel at Ahmedabad Airport yesterday, Railway Minister Ashwini Vaishnav emphasized that the Eastern and WDFCs will serve as a crucial backbone for the country's transport and logistics sector. The Prime Minister will also flag off freight train services from New Sanand, North New Makarpura, New Umargaon and

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। समय हुआ है रात्रि के 3:11:17। प्रस्तुत है कार्यक्रम हमराही। युगल गीतों से सजे इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपकी मित्र नीता अग्रवाल। साथियों, हमारे जीवन में साथ का बहुत महत्व होता है। यही साथ जब गीतों के रूप में सजता है तो उस गीत की खूबसूरती को भी बढ़ा देता है।

मोहम्मद रफी, आशा भोसले की स्वर उसी सजा ये गीत आपने सुना गेटवे ऑफ इंडिया फिल्म से। 1957 रिलीज ये फिल्म, मदन मोहन का संगीत था, राजेंद्र कृष्ण की लिखी रचना। साथियों, साथ हो तो रूठना मनाना भी रिश्तों का एक अंग कभी कभी बन जाता है। इसे खूबसूरत वानगी से सजा ये गीत सुनते हैं।

मोहम्मद रफी लता मंगेशकर के संयुक्त स्वरों का जादू, फिल्म का नाम तेरे घर के सामने, जो रिलीज हुई थी वर्ष 1963 में। साथियों, रात का समय कई बार नींद न आने का समय भी बन जाता है। अब नींद न आने के कारण तो भाई कई हो सकते हैं, उन्हीं में से एक कारण ये भी

शमशाद बेगम किशोर कुमार की आवाजों से सजी ये रचना आपने सुनी नया अंदाज फिल्म से। 1956 में ये फिल्म रिलीज हुई थी साथियों। ओपी नैयर का संगीत था और जानिसार अख्तर की लिखी रचना। और अब नीली नीली आंखों के दिल पर तीर चल गए, कब क्यों कैसे कहा, सुनते हैं इस युगल नगमे में।

0: लता मंगेशकर मोहम्मद रफी के स्वरों से सजी ये रचना अभी आपने सुनी। शंकर जयकिशन का संगीत था, हसरत जयपुरी की लिखी रचना थी। फिल्म का नाम जाने अनजाने, जो रिलीज हुई थी वर्ष 1971 में।
1: कैसे चुने सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

आशा भोसले मोहम्मद रफी के स्वरों से सजी ये रचना भी आपने सुनी बहू बेगम फिल्म से 1967 रिलीज ये फिल्म रही थी साथियों। रोशन का संगीत मजरूह सुल्तानपुरी की लिखी रचना थी। और अब सुनते हैं कि ये युगल जोड़ा क्या कह रहा है।

कल्याण जी आनंद जी का संगीतबद्ध किया गीत साथियों अभी आपने सुना। गुलशन बावरा ने ये गीत लिखा था। किशोर कुमार लता मंगेशकर की आवाजें थी। 1974 में ये फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम हाथ की सफाई।

मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा ये गीत अभी आपने सुना, सलील चौधरी का संगीत बद किया ये गीत था। लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाजें थी। 1961 रिलीज इस फिल्म का नाम माया। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल श्रोता साथी सुन रहे हैं इस समय 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हमराही। आज के इस सफर में आप हैं मेरे साथ यानी अपने मित्र नीता अग्रवाल के साथ। रात्रि के 3:41 और 6 सेकेंड कार्यक्रम में पढ़ते हैं आगे। रैना काल को सजाता ये चांद यकीनन हर दिल का चाहता हमेशा से ही रहा है, यहाँ तक कि किसी से वादा करवाने के लिए भी चांद को किस खूबसूरती के साथ सहारा बनाया जाता है या कहीं गवाह बनाया जा रहा। आइए सुनते हैं इस गीत में।

मुकेश और लता मंगेशकर के संयुक्त स्वरों से सजी ये रचना राजहट फिल्म से अभी आपने सुनी। 1956 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। मित्रों, शंकर जयकिशन का संगीत था, हसरत जयपुरी की लिखी रचना।

महेंद्र कपूर आशा भोसले के स्वरों से सजी ये रचना आप सुन रहे हैं वक्त फिल्म से। 1965 रिलीज ये फिल्म रवि का संगीत साहिर लुधियानवी की लिखी रचना। साथियों, किसी की तारीफ करना भी एक कला में शुमार है। अब यहाँ इस गीत में तारीफ हो रही, कहा जा रहा क्या सुनते हैं। और हाँ, इस संगीतमय बातचीत में मोहतरमा को शायद पहले से ही पता है कि इनकी तारीफ होने वाली है, तो ये तो रात भर सोई भी नहीं है इसी खुशी में।

आशा भोसले मोहम्मद रफी के स्वरों से सजा ये गीत बैराग फिल्म से अभी आपने सुना। ये फिल्म रिलीज हुई थी साथियों 1976 में। कल्याण जी आनंद जी का संगीत था, आनंद बख्शी की लिखी रचना। और अब आज के हमराही कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति की ओर हम बढ़ रहे हैं।

तलत महमूद लता मंगेशकर के संयुक्त स्वरों से सजी ये रचना आवाज फिल्म से अभी आपने सुनी। 1956 रिलीजी फिल्म, सलील चौधरी का संगीत था और जिया सरहदी की लिखी रचना थी। साथियों, ये थी आज के कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति और अब हमराही कार्यक्रम समाप्त होता है। अपनी मित्र नीता अग्रवाल को अनुमति दे नमस्कार। समाचारों के बाद मिलते हैं अरुणिमा कार्यक्रम में 4:10 पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात जाएंगे। वे राज्य में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। अहमदाबाद में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पूर्वी और पश्चिमी समर्पित माल ढुलाई गलियारे देश के परिवहन और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र की महत्वपूर्ण आधारभूत संरचना है। उन्होंने कहा कि यह महत्वाकांक्षी परियोजना अब पूरी हो चुकी है और प्रधानमंत्री आज इसे राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री आज शाम मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी सम्मेलन को संबोधित भी करेंगे। इस सम्मेलन का उद्देश्य डिजिटल भुगतान और वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में भारत के नेतृत्व को और मजबूत करना तथा संभावनाओं को वास्तविकता में बदलना है। गृहमंत्री अमित शाह ने गोवा पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान किया। इस अवसर पर गृहमंत्री ने गोवा पुलिस की सेवा, व्यावसायिकता, साहस और अनुशासन की सराहना की।
1: 8 दशकों की गौरवशाली गोवा पुलिस की सेवा राष्ट्रपति जी के दिए हुए निशान के साथ देश भर की पुलिस की कतार में खड़ी है। ये गौरव जिन जिन राज्यों की पुलिस को मिला वो पुलिस के गौरवशाली इतिहास, साहस, अनुशासन और समर्पण के कारण ही राष्ट्रपति महोदय ने गोवा को प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित करने का काम किया है।
0: इससे पहले गृहमंत्री ने गोवा के पणजी में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता की। श्री शाह ने कहा कि पश्चिमी क्षेत्र के राज्यों के बीच अब कोई विवाद नहीं है। उत्तर प्रदेश में बारिश और बांधों से छोड़े गए पानी के कारण 25 जिलों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। पिछले 24 घंटों में राज्य के कई हिस्सों में तेज से मध्यम बारिश हुई है। बरेली, एटा, शाहजहांपुर, बहराइच और लखीमपुर खीरी देश में सबसे अधिक बारिश वाले 5 जिलों में शामिल रहे। भारी बारिश को देखते हुए बरेली में अगले 2 दिनों के लिए सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं और सरकारी अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। उत्तर प्रदेश में ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने गंगा एक्सप्रेसवे से बेहतर कनेक्टिविटी के लिए करीब 15 किलोमीटर लंबी 105 मीटर चौड़ी सड़क बनाने का प्रस्ताव दिया है। इससे नोएडा और ग्रेटर नोएडा से गंगा एक्सप्रेसवे तक पहुंचने में करीब 30 से 45 मिनट लगेंगे। प्राधिकरण ने मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स हब से जेवर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तक 6 लेन की एलिवेटेड सड़क बनाने का भी प्रस्ताव दिया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कल शिलांग में 1,000 करोड़ रुपए से

अधिक की लागत वाली 5 परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इनमें न्यू सिलोंग जलापूर्ति योजना की दूसरे चरण, 2 सड़क संपर्क परियोजनाएं, सिलोंग सिविल अस्पताल में 30 बिस्तरों वाली आयुष सुविधा और माओखानों में विद्युत उपकेंद्र शामिल है। मणिपुर विधानसभा के 8वें सत्र के अंतिम दिन सदन ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 3,848 करोड़ रुपए से अधिक की 31 अनुपूरक अनुदान मांगे पारित की। गृहमंत्री गोविंद दास ने बताया कि कामजोंग जिले में जले 23 मकानों के पुनर्निर्माण का काम शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि मणिपुर में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर का आधार वर्ष 1951 होगा और राज्य सरकार इस मामले को केंद्र के समक्ष उठाएगी। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने नाहरलागुन में राज्य कृषि सूचना केंद्र सह किसान छात्रावास का उद्घाटन किया। यह केंद्र किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों, सरकारी योजनाओं की जानकारी और ठहरने की सुविधा उपलब्ध कराएगा। भारत को UWW विश्व बेल्ट कुश्ती चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी का प्रस्ताव मिला है। इसमें नागा कुश्ती और अलिश बेल्ट कुश्ती शामिल है। इस संबंध में किर्गिस्तान में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। चैंपियनशिप 14 से 19 दिसंबर तक प्रस्तावित है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। समय हुआ है प्रातः की 4:11 और 11 सेकेंड। प्रस्तुत है कार्यक्रम अरुणिमा। कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुप्रभात, मैं हूं आपकी मित्र नीता अग्रवाल। सूर्य की सुंदर दर्शनीय आभा ने अपने आने की दस्तक दे दी है। धरती पर सूर्य की सुंदर लालिमा, अंधियारे के बाद उजाले का सफर, जीवन को संदेश देती इसकी हर किरण।
1: Nothing should be given to you on a platter. If things are given to you on a platter, तो आपकी क्या contribution है? कुछ भी नहीं। दुनिया के बड़े से बड़े अचीवर को देख लो, किसी भी फील्ड में उनकी शुरुआत।

सुमन कल्याणपुर की आवासी सजी ये रचना अभी आपने सुनी जानवर फिल्म से 1965 रिलीज ये फिल्म साथियों शंकर जयकिशन का संगीत और हसरत जयपुरी की लिखी रचना।

बिल्कुल जी, हम सभी को प्यार करा ही बनना चाहिए। किशोर कुमार की आवाज से सजाइए गीत 9-2-11 फिल्म से अभी आपने सुना। 1957 रिलीज फिल्म, सचिन देव बर्मन का संगीत और मजरूह सुल्तानपुरी की लिखी रचना।

किशोर कुमार की आवाज़ से जी ये रचना अभी आपने सुनी साथियों। किशोर कुमार का ही संगीत था और किशोर कुमार ने ही इस गीत को लिखा था। फिल्म का नाम दूर गगन की छाओं में, जो रिलीज हुई थी वर्ष 1964 में।

मुकेश की आवाज से सजी ये रचना अभी आपने सुनी, मस्ती की धुन में गाते चले जा रहे थे ये। जी हाँ साथियों, डॉक्टर विद्या ये था फिल्म का नाम जिसका गीत अभी आपने सुना। 1962 रिलीज ये फिल्म रही थी, सचिन देव बर्मन का संगीत था और मजरूह सुल्तानपुरी की लिखी रचना थी।

जी हाँ साथियों, जब सकारात्मक साथ मिल जाता है तो बस जिंदगी और भी सुहावनी हो उठती है। छोटे बाबू, इस फिल्म से ये नगमा भी आपने सुना। 1957 रिलीज ये फिल्म थी। तलत महमूद, लता मंगेशकर की आवाजें थी, मदन मोहन का संगीत, इंदिवर की लिखी रचना। साथियों, ये जीवन के रास्ते सीधे साफ सपाट तो कदापि नहीं होते, लेकिन फिर भी जीवन को हंसते मुस्कुराते ही जिया जाए तो स्वयं अपना भी भला और हमारे आसपास का भी माहौल सही बना रह सकता है इससे।

आशा भोसले की आवाज़ से सजा ये सकारात्मक नगमा भी आपने सुना, पगला कहीं का यह था फिल्म का नाम जो रिलीज हुई थी वर्ष 1970 में। शंकर जयकिशन का संगीत था, हसरत जयपुरी की लिखी रचना थी।

फाणी जयराम के स्वर से सजी रचना गुड्डी फिल्म से आप सुन रहे हैं 1971 रिलीज फिल्म वसंत देसाई का संगीत और गुलजार की लिखी रचना। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल श्रोता साथी सुन रहे हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम अरुणिमा। आज के इस कार्यक्रम में आप हैं मेरे साथ यानी अपने मित्र नीता अग्रवाल के साथ। कार्यक्रम में पढ़ते हैं आगे। साथियों, हमारे देश प्रहरी दिन रात प्रतिकूल मौसम में विपरीत परिस्थितियों में अपनी जान की परवाह किए बगैर हमारी रक्षा सुरक्षा कर रही हैं। उन सभी सैनिकों को नमन करती हैं। साथियों, ऐसी स्थानों पर पोस्टेड जो हमारे सैनिक होते हैं, जो भी आर्मी के नौजवान होते हैं या किसी भी सेना के, वो किन परिस्थितियों में काम करते हैं ये हम बखूबी जानते हैं। लेकिन क्या होता है जब उनकी छुट्टी सैंक्शन हो जाती है, चाहे 4 दिनों की सही, 5 दिनों की सही, कितनी कितनी खुशी होती है अपने परिवार गांव शहर जाने की, ये भी कितनी अच्छी बात होती है। और कई बार ऐसा भी होता है इनके साथ कि कोई इमरजेंसी हो जाती है तो छुट्टी रद्द भी हो जाती है। लेकिन फिलहाल तो छुट्टी का माहौल है और छुट्टी का माहौल है तो इस तरह से गीत गाया जा रहा है।

मोहम्मद रफी और साथियों के स्वरों से सजी ये रचना साथियों अभी आपने सुनी आस का पंछी फिल्म से 1961 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। शंकर जयकिशन का संगीत था, हसरत जयपुरी की लिखी रचना थी। साथियों जीवन में सिर्फ कर्म ही रह जाता है, हमारे साथ भी और हमारे बाद भी यही याद किया जाता है, हमारा कर्म और हमारा व्यवहार। और कई बार यूं भी होता है, ये भी कहा जाता है क्या, इस गीत में सुनते हैं।

और ऐसी आवाजें हम कभी नहीं भूल सकते। किनारा फिल्म से ये रचना साथियों अभी आपने सुनी। 1977 रिलीज ये फिल्म थी। गुलजार की लिखी रचना, आर डी बर्मन का संगीत और भूपेंद्र सिंह, लता मंगेशकर की आवाजों का सुंदर जादू।

हेमंत कुमार की आवाज से सजी ये रचना खामोशी फिल्म से आपने सुनी। 1970 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। हेमंत कुमार का संगीत था गुलजार की लिखी रचना। और अब आज के अरुणिमा कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति के रूप में सज रहा है ये शुभत्व प्रदान करने वाला गीत।

की रचना आप सुन रहे हैं लता मंगेशकर, आशा भोसले और उषा मंगेशकर की आवाजों से सजी। रवि का संगीत शकील बदायूं की लिखी रचना। 1963 में ये फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम गृहस्थी। ये है आज के कार्यक्रम अरुणिमा की अंतिम प्रस्तुति।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे। गुजरात में प्रधानमंत्री वडोदरा से 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। साथ ही पश्चिमी समर्पित माल ढुलाई गलियारे के 3 महत्वपूर्ण खंड राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इसके साथ ही यह महत्वपूर्ण परियोजना पूरी हो जाएगी। अहमदाबाद हवाई अड्डे पर मीडिया से बातचीत में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह मेगा प्रोजेक्ट अब पूरी तरह से तैयार हो चुका है।
1: डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ईस्ट और वेस्ट, ये दोनों देश के लिए बहुत बड़ी एक बैकबोन की तरह है ट्रांसपोर्टेशन में, वो प्रोजेक्ट अब कंप्लीट हुआ पूरी तरह से। उसको माननीय प्रधानमंत्री जी कल राष्ट्र के प्रति समर्पित करेंगे। ये परियोजना ऐसी है जिसमें कई वर्ष लगे, 2014 में प्रधानमंत्री ने उस काम को हाथ में लिया, हाथ में लेके जितनी भी उसमें प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व किया और अब कंप्लीट हुआ।
0: प्रधानमंत्री कई नई रेल और मालगाड़ी सेवाओं की भी शुरुआत करेंगे। इस अवसर पर वे जनसभा को भी संबोधित करेंगे। महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम तकनीक, डिजिटल भुगतान और वित्तीय समावेशन जैसे विषयों पर चर्चा होगी। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का 7वां संस्करण 11 सितंबर तक मुंबई में चलेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कल गोवा पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान किया। इस अवसर पर गृह मंत्री ने गोवा पुलिस की सेवा, व्यावसायिकता, साहस और अनुशासन की सराहना की। इससे पहले गृहमंत्री ने गोवा के पणजी में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता की। श्री शाह ने कहा कि पश्चिमी क्षेत्र के राज्यों के बीच अब कोई विवाद नहीं है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि अनिश्चितता के दौर में भारत और लग्जमबर्ग के बीच भरोसेमंद संबंध है। नई दिल्ली में लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री जेवियर बेटल से मुलाकात के दौरान डॉ जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और वित्तीय सहयोग संबंधों के प्रमुख क्षेत्र हैं। वहीं जेवियर बेटल ने भारत के शांति प्रयासों और संघर्ष प्रभावित देशों के बीच सेतु की भूमिका की सराहना की। इसके अलावा उन्होंने सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया। श्री बेटल 3 दिन की भारत यात्रा पर हैं। विदेश मंत्री डॉ जयशंकर ने कल नई दिल्ली में पश्चिमी एशिया के साथ भारत के संबंधों पर संसदीय परामर्श समिति की बैठक की अध्यक्षता भी की। बैठक में उन्होंने खाड़ी और पश्चिमी एशिया के देशों के साथ भारत के मजबूत संबंधों और व्यापार, निवेश तथा ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग पर चर्चा की। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के महानिदेशक डॉ साइमन हेक से मुलाकात की। बैठक में बेहतर आलू बीज, किसानों की समस्याओं और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद तथा केंद्र के बीच सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। श्री चौहान ने भारत में उन्नत आलू किस्में लाने और अलग अलग जलवायु के अनुकूल नई किस्में विकसित करने पर बल दिया। केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय इम्फाल आज से 11 सितंबर तक मेघालय के उमियम में प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। सम्मेलन में देश के 21 राज्यों और 51 कृषि संस्थानों से 400 से अधिक प्रतिभागी शामिल होंगे।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। समय हुआ है प्रातः के 5:11 और 13 सेकेंड। प्रस्तुत है कार्यक्रम भोर सुहानी। कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुप्रभात, मैं हूं आपकी मित्र नीता अग्रवाल।

साथियों, प्रकृति भी हमेशा यही कहती है कि इंसानियत रखें, एक दूसरे से स्नेह भाव रखें, मर्यादा में रहें, आदर सम्मान दें हम सभी को। प्रकृति भी यही हमें कहती है, पल पल हमें सिखाती है यही अच्छी अच्छी बातें यदि हम गाये करें तो। ये गीत लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाज से सजा था। रानी रूपमती फिल्म से 1957 रिलीज ये फिल्म रही थी। SM त्रिपाठी का संगीत था, भरत व्यास की लिखी रचना थी, और अब स्नेह की डोर से बंधा ये गीत, ये भाव, आइए सुनते हैं।

उस्ताद आमिर खान और पंडित डीवी पलुस्कर के दिग्गज स्वरों से सजी ये शास्त्रीय रचना आपने सुनी बैजू बावरा फिल्म से 1952 रिलीज ये फिल्म रही थी। मित्रों, नौशाद का संगीत था शकील बदायूनी की लिखी रचना। साथियों, जल ही जीवन है, जल की एक एक बूंद कीमती है और जल बारिश के रूप में जब बरसता है, ज्यादा हो जाता है तो भी परेशानी होती है, कम होता है तो भी परेशानी होती है। जल की जरूरत हम इंसान, जानवरों, पंछियों को ही नहीं बल्कि इस धरती को, वसुंधरा को भी होती है और वसुंधरा पर पनपने वाले जो फसलें हैं उनको होती है। अगर जल की कमी हो जाए तो फसलें मुरझा जाती हैं, ठीक से नहीं उगती हैं, अन्न फल की उगाई ठीक से नहीं होती है, फल प्राप्ति नहीं होती। इसलिए सही बारिश या सिंचाई कहें जरूरी होती है हमारे खेत खलिहानों के लिए, तभी तो वो भी मुस्कुराते हैं। जब उनकी प्यास बुझ जाती है तो लहलहाते हैं, मुस्कुराते हैं वो भी।

लविन शिमला फिल्म से ये रचना अभी आपने सुनी साथियों, सुमन कल्याणपुर, मोहम्मद रफी और साथियों के स्वरों से सजी हुई। 1960 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। इकबाल कुरैशी का संगीत था, राजेंद्र कृष्ण की लिखी ये रचना थी।